सुप्रभात। मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि तद अनुसार 24 जून 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू

0: किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना की शुरुआत करते हैं मातृभूमि वंदना से।

इस मातृभूमि वंदना के बाद कार्यक्रम आराधना में आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में ये शिव भजन।

अनुराधा पौडवाल के गाए इस गंगा आरती के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना का आखिरी भक्ति गीत नरेंद्र चंचल की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख, मन की गांठें खोलना। संकलन एवं वाचन है पौलोमी हरि का।
1: भावनात्मक प्राणी है। अपने जीवन में वह अनेक लोगों से मिलता है, रिश्ते बनाता है और विभिन्न अनुभवों से गुजरता है। कभी कभी कुछ घटनाएं, कटु शब्द, विश्वासघात या अपमान हमारे मन को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने भीतर शिकायत, क्रोध और वैर भाव संजो लेते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं को लंबे समय तक पकड़े रहने को ही मन में गांठ बांध लेना या ग्रज रखना कहा जाता है। किंतु जीवन को सुखद और शांत बनाने के लिए इन शिकायतों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है, तब क्रोधित होना स्वाभाविक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उस क्रोध को वर्षों तक अपने भीतर संजोए रखते हैं। धीरे धीरे यह शिकायत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं और बार बार वैसा ही दुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को ही मानसिक पीड़ा देते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई हो, वो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन हम अपने ही मन के बोझ तले दबे रहते हैं। शिकायतों और वैर भाव को पकड़े रखने का सबसे बड़ा नुकसान हमारी मानसिक शांति को होता है। लगातार क्रोध और नकारात्मक विचार तनाव को बढ़ाते हैं। इससे मन अशांत रहता है, नींद प्रभावित होती है और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। कई बार यह तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए मन की शांति बनाए रखने के लिए क्षमा और छोड़ देने की भावना विकसित करना आवश्यक है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि शिकायत छोड़ना किसी की गलती को सही ठहराना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम उस घटना को

0: अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देंगे। क्षमा का सबसे बड़ा लाभ सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं हमें मिलता है। जब हम किसी के प्रति मन में बैठी कटुता को छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से उठाया जा रहा कोई भार उतर गया हो। शिकायतों को छोड़ने के लिए आत्मचिंतन बहुत उपयोगी होता है। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। लोग गलतियां करते हैं, कभी अज्ञानता में तो कभी परिस्थितियों के दबाव में। यदि हम दूसरों की कमियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे भीतर सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच और अपने प्रियजनों से संवाद भी मन की कटुता को कम करने में सहायक होते हैं। महान व्यक्तियों ने सदैव क्षमा और उदारता का संदेश दिया है। उनका मानना था कि क्रोध और द्वेष मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं, जबकि क्षमा उसे मजबूत और परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति शिकायतों को छोड़ना सीख जाता है, वह जीवन को अधिक सहजता और प्रसन्नता के साथ जी पाता है। अंततः शिकायतों और वैर भाव को छोड़ना आत्ममुक्ति का मार्ग है। यह हमारे मन को शांति, रिश्तों को मधुरता और जीवन को सकारात्मकता प्रदान करता है। इसलिए हमें अतीत की कटु स्मृतियों से चिपके रहने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में नहीं बल्कि प्रेम, समझ और संतोष के साथ ही जीना सच्ची बुद्धिमानी है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आपने सुना आज का विचार, मन की गांठें खोलना, संकलन एवं वाचन स्वर थे पौलोमी हरि के। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर हैं ए हरिहरन के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 104।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

0: ए हरिहरन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि परामर्श पर आधारित कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है ब्रॉयलर फार्मिंग के लाभ।
1: ब्रॉयलर फार्मिंग अर्थात मांस हेतु मुर्गी आज एक सुविकसित व्यवसाय का रूप ले चुका है और इसमें अभी संभावनाएं हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग कम समय और लागत में अधिक मुनाफा प्रदाय करने वाला व्यवसाय है, इसलिए ब्रॉयलर पालन काफी तेजी से उभर रहा है। ब्रॉयलर पालन हेतु जगह समतल हो और कुछ ऊंचाई पर हो, जिससे कि बारिश का पानी न भरे, मुख्य सड़क से ज्यादा दूर न हो, बिजली व पानी आसानी से उपलब्ध हो, चूजा दाना दवाइयां आदि आसानी से उपलब्ध हों व तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी हों। शेड का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, अर्थात शेड के जाली वाले साइड उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। शेड की चौड़ाई 25 से 30 फुट व लंबाई जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। शेड का फर्श पक्का होना चाहिए। शेड के दोनों ओर वाली साइड की दीवार फर्श से मात्र 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। शेड की छत को सीमेंट या एस्बेस्टस की चादर से बनाना चाहिए और बीचों बीच वेंटिलेशन के लिए जगह देना चाहिए। शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से 8 से 10 फुट होनी चाहिए व बीचों बीच ऊंचाई फर्श से 14 से 15 फीट होनी चाहिए। बारिश के दिनों में पानी की बौछार शेड में ना आए, इस हेतु सीमेंट की चादर को दोनों ओर से 3 फीट तक बाहर लगाना चाहिए। शेड के अंदर बिजली, प्रकाश, दाने व पानी के बर्तन, पानी की टंकी आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लंबे शेड को निश्चित दूरी पर बराबर बराबर भागों में बांट देना चाहिए। प्रत्येक 100 चूजों पर कम से कम 3 पानी के व 3 दाने के बर्तन होना आवश्यक है। दाने व पानी के बर्तन मैनुअल या ऑटोमेटिक हो सकते हैं। बुरादा के रूप में लकड़ी का बुरादा या धान का छिलका या मूंगफली का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 3 से 4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछानी चाहिए। बुरादा नया या फंगस व संक्रमण रहित होना चाहिए। ब्रॉयलर पालन में 3 तरह का

0: दाना उम्र व वजन के अनुसार दिया जाता है। प्री स्टार्टर 0 से 10 दिन तक, स्टार्टर 11 से 20 दिन तक, फिनिशर 21 से मुर्गे बिकने तक। ब्रायलर चूजा 1 किलोग्राम दाना पर 2-3 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में यह मात्रा दुगनी हो सकती है। फिर भी एक साधारण तरह से देखें तो पानी की खपत इस तरह होती है, जितने सप्ताह का चूजा है उसमें 2 गुणा करने पर जो मात्रा आएगी वह मात्रा पानी की प्रति 100 चूजों पर खपत होगी। ब्रूडिंग चूजे के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रूडिंग का तात्पर्य है चूजों को उचित तापमान प्रदान करना, जैसा कि मुर्गी अंडों को सेते समय देती है। ब्रूडिंग कई प्रकार से की जा सकती है, बिजली के बल्ब या हैलोजन द्वारा, गैस ब्रूडर या अंगीठी के बल्ब द्वारा। बिजली के बल्ब द्वारा ब्रूडिंग करने के लिए बिजली की बराबर सप्लाई अति आवश्यक है। सर्दी में प्रति चूजा कम से कम 2 वाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्मी के समय प्रति चूजा 1 वाट ऊर्जा पर्याप्त है। बिजली के बल्ब को लकड़ी या बांस के 8 टोकन या एल्युमिनियम के ब्रूडर में लगातार पहले सप्ताह फर्श से 6 इंच ऊंचाई पर रखना चाहिए। दूसरे सप्ताह ऊंचाई बढ़ाकर 10 से 12 इंच कर देना चाहिए। सर्दियों व ठंड के मौसम में ब्रूडिंग 12 से 15 दिन तक एवं गर्मी के मौसम में 4 से 5 दिन तक करना चाहिए। गैस ब्रूडिंग द्वारा क्षमता के अनुसार गैस ब्रूडर बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि 1000 या 2000 क्षमता वाले गैस ब्रूडर का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह ब्रूडिंग करने से शेड के अंदर एक समान तापमान रहता है। जिन जगहों में ठंड अधिक पड़ती है या बिजली की समस्या है, वहाँ के लिए इस तरह की अंगीठी या सिगड़ी द्वारा ब्रूडिंग कारगर है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शेड के अंदर धुआं भर सकता है व सफोकेशन के कारण चूजों की मृत्यु हो सकती है। उचित जगह उपलब्ध कराने से चूजों की बढ़त अच्छी होती है व कई बीमारियों से भी बचाव होता है। चूजों को 23 घंटे प्रकाश देना चाहिए व 1 घंटे का गैप रखना चाहिए, ताकि चूजे अंधकार होने पर भी डरे नहीं। पहले व दूसरे सप्ताह अधिक तीव्रता का प्रकाश देना चाहिए एवं उसके बाद प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम करनी चाहिए। अतः ब्रायलर फार्मिंग करने से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है एवं यह नव युवकों के लिए बेहतर रोजगार का साधन भी है।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे जंगल। सुबह 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे जनसंपर्क से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीत। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे वीरबंदन सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आप सुन सकेंगे हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक होंगे NCERT और CIET। शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा सामाजिक अपराध से बचें। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा होगी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को संजोए विषय पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गोएठ बात कार्यक्रम। ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:40। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

हमारी सांधिकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत युवा सोच, अचीवर्स और फिल्म संगीत। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधोली। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जंगल, जैव विविधता और मानव हस्तक्षेप। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे लौकी की खेती से अधिक लाभ कैसे लें और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था पर चर्चा। कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप सुनेंगे रात 10:30 पर। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

कार्यक्रम गूंजे जंगल के अंत में आइए सुनते हैं उजागिर राम राजवाड़े और साथियों के स्वरों में सरगुजिया बायर खेमटा गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेहदी हसन की गाई इस गजल से।

जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना नदीम परमार का कलाम। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज में यह गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्र की सटीक जानकारी देने वाला कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में भी चलते फिरते सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। नमस्कार, कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूं गोपेश। पहली खबर सुनते हैं एमसीबी जिले से। महंगाई बना हरियाली और जल संरक्षण का मॉडल, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में 2500 पौधों का रोपण। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 30 लाख लीटर भूजल रिचार्ज की तैयारी। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने दिए संरक्षण और सतत विकास के निर्देश। 5 क्षेत्र में विकसित होगा औषधीय एवं फलदार पौधों का हरित परिसर। इस अभियान के तहत लगभग 5 क्षेत्र में 2500 औषधीय एवं फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। इसमें आंवला, हर्रा, बहेरा, जामुन, बेल, अमलताश, करंज, अर्जुन तथा सदावर जैसे औषधीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे शामिल हैं। इन पौधों से भविष्य में न केवल हरित आवरण बढ़ेगा, बल्कि आयुष चिकित्सा पद्धति एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी समाचारों के लिए। सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मधुमती का गीत।

नमस्कार सरगुजा, एमसीबी जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में अभियान की तैयारियों की समीक्षा तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन सुनिश्चित करने

के उद्देश्य से जिला स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स कमेटी की बैठक 23 जून 2026 को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने किया। छत्तीसगढ़ के बाहर पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू। एसटी एससी एवं ओबीसी विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह सुविधा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जो राज्य के बाहर स्थित विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राप्त विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्कार सरगुजा में कुछ और भी खबरों के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत।

मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। निराश्रित बुजुर्गों के लिए बड़ी पहल, 25 सीटों वाले नवीन वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देश के अनुसार जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में वरिष्ठ एवं निराश्रित नागरिकों के लिए 25 हितग्राहियों की क्षमता वाले एक नवीन वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु राज्य अनुदान वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। वृद्धाश्रम का संचालन स्वैच्छिक अशासकीय संस्था के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले में वृद्धाश्रम संचालन के इच्छुक अनुभवी तथा विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों एवं पंजीकृत लोक न्यासों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सघन कुष्ठ खोज अभियान के तहत घर घर पहुंच रही स्वास्थ्य टीम, संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग जारी। कलेक्टर के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में सघन कुष्ठ खोज अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंचकर कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की पहचान कर रही है, ताकि रोग का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाकर समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म असली नकली का गीत।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: MCB जिले में बैंकिंग क्रांति को गति देने कलेक्टर की सख्ती, हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे ऋण और योजनाओं का लाभ, DLCC, DCC एवं DLRC बैठक में बैंकिंग योजनाओं की व्यापक समीक्षा, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए गए निर्देश। रामगढ़ महोत्सव 2026 के संबंध में 24 जून को होगी तैयारी बैठक। आषाढ़ से प्रथम दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले रामगढ़ महोत्सव 2026 के सफल आयोजन हेतु 24 जून 2026 को जिला कार्यालय के सभा कक्ष में अपराह्न 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विकासखंड उदयपुर स्थित राम वनगमन पर्यटन परिपथ स्थल एवं विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन 29 एवं 30 जून 2026 को किया जाएगा। बैठक में महोत्सव की तैयारियों, विभागीय दायित्वों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मूलभूत व्यवस्थाओं, आगंतुकों के लिए आवश्यक सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा आयोजन के सफल संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। 28 से 30 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। जिले के 1 लाख से भी अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। 693 पोलियो बूथों पर होगी व्यवस्था। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाने की अपील। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी बालक गृह अंबिकापुर में नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में फिल्म नवरंग का गीत।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकरी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा र

0: अभी आप सुन रहे थे स्थानीय सूचनाओं और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात, उसके पश्चात सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं।

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम

0: मेशा में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया।

मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर बंदन। कार्यक्रम वीर बंदन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत का इतिहास हमारे वीर जवानों की बहादुरी की कहानियों से भरा हुआ है। जब भी हम देश की सीमाओं की रक्षा की बात करते हैं तो हमारे मन में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर का नाम आता है। समुद्र तल से लगभग 21,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित यह एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहां का तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां तेज़ बर्फीली हवाओं के बीच सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे कठिन माहौल में भी अगर हमारे जवान तिरंगे की रक्षा के लिए डटे रहते हैं तो वह सिर्फ उनके सच्चे देश प्रेम की वजह से है। कार्यक्रम के आज के अंक में हम सियाचिन के उसी महान योद्धा नायब सूबेदार बाना सिंह को याद करेंगे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अरिजीत सिंह के गाए इस देशभक्ति गीत से। फिल्म का नाम है भुज।

साथियों, यह बात साल 1987 की है। पाकिस्तान ने धोखे से सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम कायडे पोस्ट रख दिया था। यह चोटी इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां बैठकर पाकिस्तानी सैनिक हमारे जवानों पर आसानी से नज़र रख सकते थे और गोलीबारी भी कर सकते थे। भारतीय सेना के लिए इस चोटी को आज़ाद कराना बहुत ही ज़रूरी था। इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को दी गई और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राजीव। इस पूरे मिशन में 24 जून की तारीख का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक महत्व है। 24 जून 1987 की रात को ही भारतीय सेना ने इस चोटी को दुश्मन से वापस छीनने के लिए अपना पहला बड़ा और गुप्त हमला शुरू किया। सूबेदार हरनाम सिंह और सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नेतृत्व में भारतीय जवानों की टुकड़ी 24 जून की रात को ही इस बर्फीली चोटी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर था, इसलिए उनकी भारी गोलीबारी और अचानक आए बर्फीली तूफान में हमारे कई जवान शहीद हुए। इस घटना से पूरी सेना दुखी थी, लेकिन भारतीय सेना कभी हार नहीं मानती। हमारे जवानों ने तय किया कि वो 24 जून को शहीद हुए अपने साथियों के इस बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों के स्वरों में फिल्म क्रांति से लिया गया ये देशभक्ति गीत।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वीर बंदन में। कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं सियाचिन के हीरो परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह और ऑपरेशन राजीव की। साथियों, जब 24 जून के शुरुआती हमले के बाद हालात बहुत कठिन हो गए, तब मैदान में उतरे नायब सूबेदार बाना सिंह। उन्होंने अपने शहीद साथियों का बदला लेने और अधूरे मिशन को

करने की ठानी। 26 जून सन 1987 की सुबह। बाना सिंह ने अपने साथी सिर्फ 4 जवानों को लिया और उस मिशन पर आगे बढ़े जिसे लोग असंभव मान रहे थे। उनके सामने बर्फ की 1500 फीट ऊंची सीधी दीवार थी। इस दीवार पर दिन के उजाले में चढ़ना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था, लेकिन बाना सिंह और उनके साथियों के हौसले बुलंद थे। कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफान के बीच वे लोग धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। दृश्यता बहुत कम थी, जिसका फायदा उठाकर वे बिना कोई आवाज़ किए दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच गए।

कार्यक्रम वीरबंधन में अभी आपने सुना बी प्राक की आवाज़ में फिल्म केसरी का गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह, अरशद और अरुण की आवाज़ में फिल्म राजी से लिया गया ये देशभक्ति गीत।

साथियों, सूबेदार बाना सिंह जैसे ही चोटी पर पहुंचते हैं, उन्होंने बिना समय गंवाए दुश्मन के बंकर पर हमला कर दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से दुश्मन के मुख्य बंकर के अंदर हथगोला फेंक दिया, जिससे बंकर तबाह हो गया। इसके बाद भारतीय जवानों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच आमने सामने की सीधी लड़ाई हुई। बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी संगीनों से दुश्मन पर ऐसा जोरदार हमला किया कि पाकिस्तानी सैनिक डर गए। भारत के इन शेरों का ऐसा रूप देखकर दुश्मन अपनी जान बचाकर भागने लगे और कुछ तो डर के मारे चोटी से नीचे कूद गए। आखिरकार उस चोटी से पाकिस्तान का झंडा हटा दिया गया और भारत का तिरंगा गर्व से लहराने लगा। भारतीय सेना ने बाना सिंह की इस महान जीत को सम्मान देने के लिए उस चोटी का नाम हमेशा के लिए बाना टॉप रख दिया। नायब सूबेदार बाना सिंह को उनकी इस अद्भुत बहादुरी और सूझबूझ के लिए देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। आज सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन बाना सिंह हमारे बीच मौजूद हैं और उनका अनुशासित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। 24 जून को शुरू हुआ वह संघर्ष और उसके बाद मिली यह जीत हमें सिखाती है कि जब देश की रक्षा की बात आती है तो मौसम की मार, हथियारों की कमी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ दिल में धड़कता हुआ देश प्रेम। आज हमारा पूरा देश कैप्टन बाना सिंह और सियाचिन के शहीदों को गर्व से नमन करता है। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म शहीद का गीत।

0: कार्यक्रम वीर वंदन अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 होने को हैं, माफ कीजिएगा, सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम गांधी चर्चा हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: गांधी चर्चा, इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरी समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, महात्मा गांधी की कृति मेरे समकालीन गांधी दर्शन की एक अनमोल धरोहर है। इसमें गांधी जी ने अपने दौर के कई व्यक्तित्वों को याद किया है। इसी क्रम में आज से हम आरंभ कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। तो लीजिए सुनिए इस विचार श्रृंखला का पहला भाग।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अब संसार में नहीं है, ये विश्वास करना कठिन मालूम होता है कि वह संसार से उठ गए। हम लोगों के समय में ऐसा दूसरा कोई नहीं जिसका जनता पर लोकमान्य के जैसा प्रभाव हो। हजारों देशवासियों की उन पर जो भक्ति और श्रद्धा थी वह अभूतपूर्व थी। ये अक्षरशः सत्य है कि वह जनता के आराध्य देव थे, प्रतिमा थे। उनके वचन हजारों आदमियों के लिए नियम और कानून से थे। पुरुषों में पुरुष सिंह संसार से उठ गया, केसरी की घोर गर्जना विलीन हो गई। देशवासियों पर उनका इतना प्रभाव होने का क्या कारण था? मैं समझता हूं इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सहज है। उनकी स्वदेश भक्ति ही उनकी इंद्रिय वृत्ति थी। वह स्वदेश प्रेम के सिवा दूसरा धर्म नहीं जानते थे। जन्म से ही वह प्रजासत्तावादी थे। बहुमत की आज्ञा पर इतना अधिक विश्वास करते थे कि मुझे उससे भयभीत होना पड़ता था। पर यही वह बात है जिससे जनता पर उनका इतना अधिक प्रभाव था। स्वदेश के लिए वह जिस इच्छा शक्ति से काम लेते थे वह बड़ी ही प्रबल थी। उनका जीवन वह ग्रंथ है जिसे खोलने की भी जरूरत नहीं, वह खुला हुआ ग्रंथ है। उनका खाना पीना और पहनावा बिल्कुल साधारण था। उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही निर्मल और बेदाग है। उन्होंने अपनी आश्चर्यजनक बुद्धि शक्ति को स्वदेश को अर्पण कर दिया था।

जितनी स्थिरता और दृढ़ता के साथ लोकमान्य ने स्वराज्य की शुभ वार्ता का उपदेश किया, उतना और किसी ने नहीं किया। इसी कारण स्वदेशवासी उन पर अटूट विश्वास रखते थे। साहस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी आशावादिता अदम्य थी। उनको आशा थी कि जीवन काल में मैं ही संपूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित हुआ देख सकूंगा। यदि वह इसे नहीं देख सके तो उनका दोष नहीं। उन्होंने निसंदेह स्वराज्य प्राप्ति की अवधि बहुत कम कर दी है। ये अब हम लोगों के लिए है कि जो अभी तक जी रहे हैं कि अपने द्विगुणित उद्योग से उसको जहां तक हो शीघ्र सत्य कर दिखाएं। मैं अंग्रेजों को ऐसी धारणा बनाने से मना करता हूं कि लोकमान्य अंग्रेजों के शत्रु थे या अधिकारी वर्ग या अंग्रेजी भाषा से घृणा करते थे। कलकत्ता कांग्रेस के समय हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के संबंध में उन्होंने जो कहा था उसे सुनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। वे कांग्रेस पंडाल से तुरंत ही लौटे थे। हिंदी के संबंध में उन्होंने अपने शांत भाषण में जो कहा उससे बड़ी तृप्ति हुई। भाषण में आपने देशी भाषाओं का ख्याल रखने के कारण अंग्रेजों की बड़ी प्रशंसा की थी। विलायत जाने पर यद्यपि उन्हें अंग्रेज जुरूरों के विषय में बुरा ही अनुभव हुआ, तथापि उनका ब्रिटिश प्रजासत्ता में बड़ा ही दृढ़ विश्वास हो गया। उन्होंने यहां तक कहा था कि पंजाब के अत्याचारों का चित्र सिनेमेटोग्राफ यंत्र द्वारा ब्रिटिश प्रजासत्तावादियों को दिखाना चाहिए।

श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। ये विचार श्रृंखला आगामी अंकों में भी जारी रहेगी।

0: प्रकरण मेरी समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास या आधुनिक संसाधनों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस समाज के नागरिक कितने जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील हैं। समाज में सकारात्मक परिवर्तन तभी संभव होता है जब लोग अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। आज का समय अवसरों और चुनौतियों दोनों का समय है। एक ओर विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संकट, जल की कमी, डिजिटल जोखिम और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आई हैं। इन विषयों पर जागरूकता केवल जानकारी नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का पहला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म पलकों की छांव से। स्वर हैं किशोर कुमार के।

साथियों, जल जीवन का आधार है। मानव जीवन, कृषि, उद्योग और प्राकृतिक संतुलन, सबका अस्तित्व जल पर आधारित है। फिर भी हम कई बार इसके महत्व को समझने में देर कर देते हैं। आज दुनिया के अनेक क्षेत्रों में जल संकट चिंता का विषय बन चुका है। बढ़ती आबादी, जल का अत्यधिक दोहन और जल स्रोतों के प्रदूषण ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाया है। हम सभी अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे नल खुला न छोड़ना, वर्षा जल संचयन अपनाना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और अनावश्यक जल उपयोग को कम करना। जल संरक्षण केवल भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। इसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय है। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सीधे मानव जीवन पर पड़ता है। वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई आज गंभीर चिंताएं हैं। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते,

बल्कि जल चक्र और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, यदि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो बड़ा बदलाव संभव है। आइए प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लें।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं जन जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की। सजग समाज, सशक्त देश। साथियों, आज का जीवन डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ है। शिक्षा, बैंकिंग, खरीदारी, संचार और मनोरंजन, लगभग हर क्षेत्र तकनीक पर आधारित है, लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी जरूरी है। साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। नकली कॉल, फर्जी लिंक, ऑनलाइन ठगी और पहचान की चोरी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। डिजिटल सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम है सतर्कता। कभी भी OTP, पासवर्ड या UPI पिन साझा न करें। किसी भी संदिग्ध संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक होता है। साथियों, तकनीक ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, उतना ही उसने हमें अधिक जिम्मेदार भी बनाया है। आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं बल्कि व्यक्तिगत जानकारी का केंद्र बन चुका है। इसलिए डिजिटल व्यवहार में अनुशासन आवश्यक है। मजबूत पासवर्ड, सुरक्षित ऐप, जागरूक उपयोग हमारी सुरक्षा को मजबूत करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को भी डिजिटल सुरक्षा की जानकारी देना आज की मुख्य आवश्यकता है। तकनीक तभी उपयोगी है जब उसका प्रयोग समझदारी से किया जाए। साथियों, कार्यक्रम गुंजन में अभी आपने सुना था फिल्म अर्पण का गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में। साथियों, डिजिटल जागरूकता केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि संतुलित जीवन से भी जुड़ी हुई है। लगातार स्क्रीन का उपयोग, सूचना का दबाव और आभासी जीवन कई बार मानसिक थकान का कारण बनता है। इसलिए आवश्यक है कि तकनीक के साथ मानवीय संबंध और वास्तविक जीवन का संतुलन बना रहे। समय प्रबंधन, परिवार के साथ समय और स्वस्थ दिनचर्या भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म गैम्बलर का गीत।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम गुंजन में। साथियों, कार्यक्रम में आगे बातें करते हैं स्वास्थ्य, स्वच्छता और नशा मुक्ति पर। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन मिलकर जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। स्वास्थ्य केवल बीमारी न होने का ही नाम नहीं, बल्कि संतुलित जीवन शैली का परिणाम है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, व्यायाम और स्वच्छता स्वास्थ्य की मजबूत नींव है। इसके साथ ही नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के सामने एक गंभीर चुनौती है। नशा व्यक्ति की क्षमता, परिवार की खुशियां और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है। युवाओं को खेल, शिक्षा, संगीत, साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना आज के समय की प्रमुख आवश्यकता है। स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते

साथियों, आज हमने जल संरक्षण, पर्यावरण चेतना, डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। इन चुनौतियों का समाधान केवल नीतियों से नहीं बल्कि जन भागीदारी और जागरूकता से संभव है। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक से मुझे यानी अपने रेडियो साथी गोपेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: रहे थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर की डॉक्टर बुधरी ताती भी शामिल थीं। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती है। वर्ष 1986 में इन्होंने बस्तर जिले में महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के एक केंद्र के रूप में बारसूर को स्थापित किया। इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। अलनीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री नेताम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देने के साथ ही बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि कृषि विभाग ने कम अवधि वाली धान की किस्मों को बढ़ावा देने के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहनी और तिलहनी फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को समर्थन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण 1 अप्रैल को ही किया जाएगा। बैठक में स्कूलों की साफ सफाई, मरम्मत कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को 31 जुलाई तक दोबारा स्कूलों में प्रवेश दिलाने और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और 1 चार पहिया वाहन बरामद किया है, जिस पर नीली बत्ती और पुलिस लिखा हुआ था। और कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य विकास किसान समृद्धि सह योजना PMKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों तथा कर्मचारियों से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश के 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नया रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर

भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही औसत वर्षा 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम की जानकारी के बाद आइए एक नजर डालें आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों पर। सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे आप सुन सकेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा सामाजिक अपराध से बचें। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोठ बात कार्यक्रम और चर्चा होगी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को संजोए विषय पर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:40 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे युवा सोच, अचीवर्स और कुछ फिल्मी नग्न में। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे राम भजन, ठाकुर मिंजौर साथी। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जंगल, जैव विविधता और मानव हस्तक्षेप। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे लौकी की खेती से अधिक लाभ कैसे लें विषय पर सुझाव। कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुनेंगे रात 8 बजे। रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ फरमाइशी फिल्मी नगमे। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। समय हो रहा है कुछ नए फिल्मी गीतों का, तो प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य का ये गीत। साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम है बेशर्म। इस गीत को लिखा है राजीव बरनवाल ने और धुन बनाई है ललित पंडित ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म कलंक का गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सोनू निगम और परिणीति चोपड़ा की आवाज में कौशल मुनीर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है मेरी प्यारी बिंदु।

हैप्पी न्यू ईयर। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं विशाल शेखर।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगू तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के।

0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही हे तो महू तो सुनू भाई एदे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाणी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि एदे FM में भी 100.2 MHz में भी एलाएदे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आजा नचले। गीतकार हैं पीयूष मिश्रा और संगीतकार हैं सलीम सुलेमानी।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में रश्मि विरक का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया था तनिष्क वागची ने। फिल्म थी मरजावा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की ही आवाज में कुमार का लिखा गीत। संगीतकार हैं रोचक कोहली। फिल्म का नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गोल्ड से। इसे गाया है यासिर देसाई ने। नगमा निगार और मौसीकार हैं आर्को।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले से। स्वर हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा के। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं फिल्म छिछोरे का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम नए तराने के अंत में आइए सुनते हैं अतीफ असलम की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत। इस गीत में अतीफ असलम का साथ दिया है चिन्मयी ने। फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो।

0: अतीफ असलम और चिन्मय के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए ताराने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर

0: खासतौर से चर्चा हुई जब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी समाचार हम दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM 100.2 पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली फरमाइश।

ऐश के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं। औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, आप सभी के पसंद का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत, फिल्म है वो कौन थी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई। इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, महादेव घाट अमले।

महेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। आप सभी के पसंद का सुनते हैं यह गीत।

अगले गीत के फरमाइश करता हैं सरोज कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा से मुज्तावा खान, राफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, मेहरनगर

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म है मंजिल, संगीतकार योगेश, गीतकार हैं आरडी बर्मन और इस गीत को फरमाइश भेजा है चांदनी पंडरिया, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विकी नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन ने।

0: यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मलाकार, योगेश मलाकार, सुनीता मलाकार, मुस्कान मलाकार, गौतम नगर नादेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव विठल, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरन खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से गणेश खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा। आप सभी के पसंद पर पेश है ये गीत।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर प्रेम का यह गीत, संगीतकार आनंद बख्शी और गीतकार आरडी वर्मन। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला फरमाइश। श्रृंगेरी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल से, ग्राम बेलगर गांव से, मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित, बेरडी से राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल डोमने, अर्जुन गबनेकर, धीरज सवासेरे, रिगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता ना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, जय माता दी नमस्कार ये देवीगंज रोड अंबिकापुर से, राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और इनके सभी परिवार की ओर से ये फरमाइश मिली है। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल। आप सभी के पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल का यह गीत। संगीतकार हैं योगेश और इस गीत के गीतकार हैं आरडी वर्मन और इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने। पेश है ये गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: यदि राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की यदि ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कहीं तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकत है।
1: हाँ, अब ये तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं योगेश का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं सलिल चौधरी। फिल्म है आनंद, लीजिए सुनिए यह गीत। और इस गीत को फरमाइश किया है इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम, उल्लाह अकरम, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। अनारकली बाजार जारगांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाविया, भाई सूछा पाठक। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा।

लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फ़कीर, डब्ल्यू उल्लाह फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर, बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी, फ़र्जू वली अंसारी, फ़र्जी वली अंसारी। आप सभी के पसंद का गीत सुनते हैं। मुकेश की आवाज़ में

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

कार्यक्रम आपकी पसंद की कड़ी में हमें अगली फरमाइश भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, यवतमाल विभद्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजियाभे, तन्मय बेबी अनिष्का राधिका गजियाभे, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहाना अरजान और अबान अब्बासी, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चांदनी, लीला फतेह चांदनी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या, आप सभी के पसंद पर पेश है फिल्म आंधी का यह गीत। संगीतकार हैं गुलजार और गीतकार आरडी बर्मन। इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: सुबह के 11:55
1: प्रादेशिक समाचार होने को के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा और अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 आपचारी बालक फरार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कम से कम 50% प्रतिभागियों में महिलाएं और

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल से आयोजित किया जाएगा। अलनीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून कमजोर होने की आशंका के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री नेताम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देने के साथ ही बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति के तहत कृषि अवशेष, गोबर और जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। नई नीति के क्रियान्वयन से प्रतिवर्ष लगभग 2,16,000 टन पेट्रोल और डीजल के समतुल्य ईंधन की आपूर्ति CBG के माध्यम से की जा सकेगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होने के साथ साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश के किसानों, गौपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह नीति नए अवसर लेकर आएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण 1 अप्रैल को ही किया जाएगा। बैठक में स्कूलों की साफ सफाई, मरम्मत कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को 31 जुलाई तक दोबारा स्कूलों में प्रवेश दिलाने और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 आबचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तेज बारिश और गरज चमक के बीच आबचारी बालकों ने कमरे की खिड़की उखाड़ी और पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फरार आबचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ पर हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देश भर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा और अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 आबचारी बालक फरार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन

व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो श्रोताओ, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है।

0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और बसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा

0: चर्चा मिल जाएगी। लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए

0: उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधि भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए

0: विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
2: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
2: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
2: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
2: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण

0: अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम पर 100.2 मेगाहर्ट्स में ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन। कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है समय।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम चयन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंकिता। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे साथी की जो हर पल हमारे साथ रहता है लेकिन कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है समय। समय एक ऐसा शब्द जिसमें जीवन भर का सार समाया हुआ है। कभी यह खुशियों का पल लेकर आता है तो कभी चुनौतियों की सीख। समय ही हमें सिखाता है कि हर रात के बाद सुबह

आती है और हर कठिनाई के बाद सफलता का रास्ता भी खुलता है। कहा गया है, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और समय से बड़ा कोई धन नहीं। दोस्तों, समय की कीमत वही समझता है जिसने किसी अपने के साथ बिताए हुए पल खो दिए हों या किसी अवसर को हाथ से निकलते देखा हो। इसलिए हमें हर क्षण का सम्मान करना चाहिए। इसी खूबसूरत विचार के साथ समय पर आधारित एक मधुर गीत सुनते हैं, फिल्म रुदाली का। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीतकार हैं भूपेन हजारिका। गीत को आवाज़ें दिया है लता मंगेशकर, आशा भोसले और भूपेन हजारिका ने। लीजिए प्रस्तुत है यह गीत।

इस गीत के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, समय नदी की धारा की तरह है, यह लगातार बहता रहता है। जो इसके साथ चलना सीख जाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन जो समय को हल्के में लेता है वह अक्सर पीछे रह जाता है। बचपन में हम जल्दी बड़े होने की सोचते हैं और बड़े होकर बचपन के दिनों को याद करते हैं। यही तो समय का जादू है। आइए समय के इस सफ़र को महसूस करते हुए सुनते हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत फिल्म कर्म से। संगीतकार हैं आरडी बर्मन और इस गीत को आवाज़ दिया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है समय का सही उपयोग। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना और आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। कभी कभी कठिन समय भी आता है, लेकिन वही समय हमें मजबूत बनाता है। संघर्ष के दिन सफलता के नींव रखते हैं। इसी सकारात्मकता के साथ आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा। इस गीत को लिखा है कुलदीप सिंह ने और फिल्म है जय रघुनंदन जय सियाराम। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है अशोक खोसला ने। सुनते हैं ये गीत।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

दोस्तों, समय का सबसे सुंदर उपहार है अनुभव। हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, चाहे खुशी हो या गम, हर पल जीवन की किताब का एक नया अध्याय बन जाता है। कहा जाता है, अच्छा समय यादें देता है और बुरा समय सीख देता है, इसलिए हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का लिखा यह गीत फिल्म समय के दर्पण जीवन की धारा में। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने। लीजिए प्रस्तुत है यह गीत।

श्रोताओं, समय पर आधारित यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय भी उसी की कद्र करता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए।

0: हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट

0: सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। दिन के 1:05 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
3: ब्रायलर फार्मिंग अर्थात मांस हेतु मुर्गी आज एक सुविकसित व्यवसाय का रूप ले चुका है और इसमें अभी संभावनाएं हैं। ब्रायलर फार्मिंग कम समय और लागत में अधिक मुनाफा प्रदाय करने वाला व्यवसाय है, इसलिए ब्रायलर पालन काफी तेजी से उभर रहा है। ब्रायलर पालन हेतु जगह समतल हो और कुछ ऊंचाई पर हो, जिससे कि बारिश का पानी न भरे, मुख्य सड़क से ज्यादा दूर न हो, बिजली व पानी आसानी से उपलब्ध हो, चूजा दाना दवाइयाँ आदि आसानी से उपलब्ध हों व तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी हों। शेड का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, अर्थात शेड के जाली वाले साइड उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। शेड की चौड़ाई 25 से 30 फुट व लंबाई जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। शेड का फर्श पक्का होना चाहिए। शेड के दोनों ओर वाली साइड की दीवार फर्श से मात्र 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। शेड की छत को सीमेंट या एस्बेस्टस की चादर से बनाना चाहिए और बीचों बीच वेंटिलेशन के लिए जगह देना चाहिए। शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से 8 से 10 फुट होनी चाहिए व बीचों बीच ऊंचाई फर्श से 14 से 15 फीट होनी चाहिए। बारिश के दिनों में पानी की बौछार शेड में ना आए, इस हेतु सीमेंट की चादर को दोनों ओर से 3 फीट तक बाहर लगाना चाहिए। शेड के अंदर बिजली,

प्रकाश, दाने व पानी के बर्तन, पानी की टंकी आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लंबे शेड को निश्चित दूरी पर बराबर बराबर भागों में बांट देना चाहिए। प्रत्येक 100 चूजों पर कम से कम 3 पानी के व 3 दाने के बर्तन होना आवश्यक है। दाने व पानी के बर्तन मैनुअल या ऑटोमेटिक हो सकते हैं। बुरादा के रूप में लकड़ी का बुरादा या धान का छिलका या मूंगफली का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 3 से 4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछानी चाहिए। बुरादा नया या फंगस व संक्रमण रहित होना चाहिए। ब्रायलर पालन में 3 तरह का दाना उम्र व वजन के अनुसार दिया जाता है। प्री स्टार्टर 0 से 10 दिन तक, स्टार्टर 11 से 20 दिन तक, फिनिशर 21 से मुर्गे बिकने तक। ब्रायलर चूजा 1 किलोग्राम दाना पर 2-3 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में यह मात्रा दुगनी हो सकती है। फिर भी एक साधारण तरह से देखें तो पानी की खपत इस तरह होती है, जितने सप्ताह का चूजा है उसमें 2 गुणा करने पर जो मात्रा आएगी वह मात्रा पानी की प्रति 100 चूजों पर खपत होगी। ब्रूडिंग चूजे के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रूडिंग का तात्पर्य है चूजों को उचित तापमान प्रदान करना, जैसा कि मुर्गी अंडों को सेते समय देती है। ब्रूडिंग कई प्रकार से की जा सकती है, बिजली के बल्ब या हैलोजन द्वारा, गैस ब्रूडर या अंगीठी के बल्ब द्वारा। बिजली के बल्ब द्वारा ब्रूडिंग करने के लिए बिजली की बराबर सप्लाई अति आवश्यक है। सर्दी में प्रति चूजा कम से कम 2 वाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्मी के समय प्रति चूजा 1 वाट ऊर्जा पर्याप्त है। बिजली के बल्ब को लकड़ी या बांस के 8 टोकन या एल्युमिनियम के ब्रूडर में लगातार पहले सप्ताह फर्श से 6 इंच ऊंचाई पर रखना चाहिए। दूसरे सप्ताह ऊंचाई बढ़ाकर 10 से 12 इंच कर देना चाहिए। सर्दियों व ठंड के मौसम में ब्रूडिंग 12 से 15 दिन तक एवं गर्मी के मौसम में 4 से 5 दिन तक करना चाहिए। गैस ब्रूडिंग द्वारा क्षमता के अनुसार गैस ब्रूडर बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि 1000 या 2000 क्षमता वाले गैस ब्रूडर का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह ब्रूडिंग करने से शेड के अंदर एक समान तापमान रहता है। जिन जगहों में ठंड अधिक पड़ती है या बिजली की समस्या है, वहाँ के लिए इस तरह की अंगीठी या सिगड़ी द्वारा ब्रूडिंग कारगर है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शेड के अंदर धुआं भर सकता है व सफोकेशन के कारण चूजों की मृत्यु हो सकती है। उचित जगह उपलब्ध कराने से चूजों की बढ़त अच्छी होती है व कई बीमारियों से भी बचाव होता है। चूजों को 23 घंटे प्रकाश देना चाहिए व 1 घंटे का गैप रखना चाहिए, ताकि चूजे अंधकार होने पर भी डरे नहीं। पहले व दूसरे सप्ताह अधिक तीव्रता का प्रकाश देना चाहिए एवं उसके बाद प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम करनी चाहिए। अतः ब्रायलर फार्मिंग करने से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है एवं यह नवयुवकों के लिए बेहतर रोजगार का साधन भी है।

घर गोसाइन कार्यक्रम सुनने वाला जम्मू बहनी मनला संगी मनला किस्मतिया बहन के राम राम जय जोहार। बहनी हो उम्मीद करत हूँ आप मन बने बने हुई है। अब भैया बड़ घाम है, इतना रोसे घाम हर लगाता है। नहीं देखी ये समय में अभी घाम लगत है और रोसे लगाता है, लेकिन साँझ जुआर होत होत बदरी पानी घड़ के लागेल और भाई छुटपुट बरखा भी होता है। कहूँ कहूँ जग भाई देखी बरखा भी तेज होता है और अब लगता है कि बारी बुने के समय होएगी सा है। और हमार बहनी मन जो है मकई बोदी और भैया बारी मनला जो तो आए के बुनवाए के शुरू कर देन हुई और

भैया मन भी अब नागर जुआ मन लल्ले के खेत कति चल दिन हुई, कह कि अब काम के समय शुरू होएगी सह। संगे संगे लइका मन के स्कूल भी खुल गई सह, तो लइका मन भी जात हुई पढ़े बर। अब बहनी मन के काम बूता चटिक आओ बाड़ी सह। बहनी हो देखी ए समय में चटिक लइका मन के ध्यान बढ़िया कन करब, काहे कि देखी नकदे आमा तो पाकी सा है और लइका मन जो है खाई ने, और जैसा मौसम करता है ओ में देखी पेट खराब होए के ज़्यादा चांस है कि भाई पेट खराब हो सकता है लइका मन कर। तो कोशिश ये करना चाहिए कि लइका मन ला बढ़िया कर देखी, एक तो साफ सफाई से रखी, दूसरा खाए पिए कर उनका विशेष रूप से ध्यान दी, ताकि मौसम कर कोई भी जो बुरा असर है वो मन ऊपर मत पड़े। कहे कि उमस उमस के साथ साथ जो कहिया कि फिर ठंडा लागे लागेल, ओकर बाद फिर पानी बरसी तो ठंडा लागी, तीने नकदे कन उमस रही, और घाम में से लइका मन स्कूल से भी आते नहीं तेकर तुरंत पानी मनला हेरी और तुरंत पिए लग जाते। उमनला चटिक रोए के शरीर के तापमान है ओला सामान्य होए के बाद ही उमनला पानी उनी पीना चाहिए, चटिक रोए के रखब। ये समय में एक चीज़ हुआ है कि जो खान पान है वो थोड़ा हमर गड़बड़ाएल, पेट हर जो है पचे बर नहीं होल, सियान मनला भी तीहा करना पड़ी, सियान मन कर खान पान भी बढ़िया कर रखना पड़ी। बहनी हो एकर साथ साथ एक चीज़ हुआ है कि जब उमस और गर्मी करे ना मौसम के जब बदलाव होल, तो रिकिम रिकिम के जीव जंतु मन भी जो है वो बहिरे आ जाते हैं। मोर इशारा आप मत समझ गए हुई है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये समय में सांप बिच्छू और कई ठो ऐसा जहरीला जीव है जेकर जमन के भाई बहरे निकल निकल के भाई भूलते हैं और हमन ला भी जीव कर नुकसान हो सकता है। तो आसपास साफ सफाई रखी और बच्चे पर भाई मच्छरदानी के भी प्रयोग करी, खटिया मन में सूतब, भुइयाँ डसा के झीने सूतब भाई, गर्मी में सूतत हुई है कि बढ़िया लागी करके, लेकिन अब मत सूतिया। बरखा गिरे के बाद अब ये जीव जंतु मन का ढेरेज कन खतरा हो जाए, तो आप मन कोशिश यही करिया कि भाई डसना डसा के सूतना है तो खटिया में सूतिया, बढ़िया मच्छरदानी लगाए के सूतिया। भाई देखिए अपन तरफ से सुरक्षा हमन ला करना चाहिए है नी, हमन अगर ढेरी करब नहीं तो कथन न कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो चाहे वो गाड़ी चलाए में हो, चाहे घर में हमन अगर सावधानी रहती, चाहे स्वास्थ्य के प्रति अगर हमन सावधानी नहीं बरता थी, तो मान के चली कि हमारे नुकसान है। तो देखिए आज आप मन पर भाई गोट बात कार्यक्रम भी लाने हो, आप मन कर मेल चिट्ठी मनला भी लाने हो, और संगे संगे एक ठन गोटाऊ कहना चाहूँ कि बहनी हो वर्तमान समय में हम देखे थे कि हमारे समाज में रिकिम रिकिम के अपराध जो है वो बढ़ जाता है। अब हमला सामाजिक अपराध से कैसे बचना है? देखिए आज के समय में चोरी ठगी नशाखोरी घरेलू हिंसा है, बाल विवाह दहेज प्रथा, चाहे साइबर ठगी होगी, ये सब चीज़ अड़बड़ बाढ़ हिस्सा है। बेटी बहन मन सुरक्षित नहीं है, कहूँ भी देखिए तो भाई बहनी बेटी मन पर अत्याचार हुआ थे, ये भी एक सामाजिक अपराध का है। तो देखिए एकर बर हमन ला सबसे पहले तो जरूरी है कि जागरूक रहना है, काकरो संग अनजान में जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मोबाइल में आए वाला कोई भी जो हमारा लगे संदेह लगेल काल मैसेज, चाहे कोई भी चीज़ रहे, चाहे कोई ऑफर आयल कि लालच भरा ऑफर रहे कि भाई तुम कर इतना लाख कर लग गई सा है, और हमन चट ले ओला बटन ला दबाए कि हाँ भाई अरे भैया जब कुछ भर ले नहीं है तो कहाँ ले बेटा ही। तो ये सब चीज़ में लालच में हमला नहीं रहना है और सावधान रहना है। अपन बैंक खाता कर एटीएम नंबर और ओटीपी काकरो संग साझा जिनेज करब। एक साथ साथ देखिए लइका मनला भी हमला चटिक ध्यान देना है कि लइका मनला एक तो अच्छा संस्कार के साथ साथ उमन कोनो नशा में तो नहीं है, गलत संगति में तो नहीं है, ये सब चीज़ का ध्यान देना हमला बहुत जरूरी है। बहनी मन के सुरक्षा भी देखिए हमर जिम्मेदारी है, कोनो प्रकार के यदि छेड़छाड़ हिंसा चाहे कोई प्रकार के भी अगर अन्याय आप मन देखा थी तो ओकर जानकारी हमला तुरंत पुलिस ला देना है, संबंधित अधिकारी मनला भी देना है। अगर हमन अपराध ला छुपाए के रकम नहीं और अगर विरोध नहीं करब तो यही धीरे धीरे आगू बढ़ जाए और बड़ा अपराध के रूप ले सकता है। तो देखिए अगर गांव मोहल्ला का जो हमन जो मनखे मन रहते हैं, हमन अगर एक दूसरे के सहयोग करती थी, एक दूसरे के साथ दे थी ना, तो ये सब अपराध जितना भी है ओकर से हमन बांच सकती थी। कोई भी अगर व्यक्ति संदेहास्पद लगे हमला कि भाई ये आदमी जो है गांव का नहीं है, बहरे के दिखता है, चाहे कहीं ओकर ऐसा गोट दिख जाते हैं हमला जिनमें हमला शक होता है, तो हमला तुरंत एक बारे में जानकारी भाई पहले तो पंचायत में भी दी और सहयोग ले करके और बाद पुलिस में भी ओकर जा करके जानकारी जरूर दी। बनी हो अपन सुरक्षा हमारा अपन हाथ में है, चाहे कोई भी चीज़ रहे। हम मैं अभी अपराध के जैसे गोट कहते रहे आप मंचक मान के चली कि यदि कोई बेटी महीना है अगर घर में ला के देखिए मजाक मजाक में भी कहते ना कि भाई जीजा साली का रिश्ता है, देवर भौजाई का रिश्ता है, रास्ता में कोई प्रकाश जाते हैं कोई बात से अपन छेड़खानी करते है भाई मजाक कर दहीस, घरे आए कि बेटी मतलब मान लो उधर अच्छा नहीं लगीस, उम्र लगीस कि भाई हम ओकर से सहज नहीं हो पाए, घरे ला के बताते हैं कि भाई ये कैसे कस गोट होइस, तो गांव कर मन बोल देते हैं, अरे अपन परिवार वाला मन बोल देते हैं अरे जीजा तो लागेल
का होगी तो।

ये जो छोटा छोटा चीज है, हमन ओला कहते थे कि भी रिश्ता है, रिश्ता में हंसी मजाक के रिश्ता है तो ओला हमन ला सहज लेना है। नहीं, अगर ऐसा है कि कोई भी मजाक अगर असहज लगता है तो तुरंत ओकर खिलाफ में बोली और आवाज़ उठाई। एकर से देखिए छेड़खानी और जो बहनी मन पर जो अपराध होता है वो कर से बांध सकत थी। देखिए बहुत सारा गोटा है और भाई मोर गोठर तो खत्म नहीं हुई, लेकिन चटिक संदेश भी आया है तो लेगी चेली पहले संदेश ला सुन लेती, तेकर फिर गोठियात रहो।

0: और जो बहनी मन पर जो अपराध होता है वो कर से बांध सकत ही। देखिए बहुत सारा गोटा है और भाई मोर गोठर तो खत्म नहीं हुई, लेकिन चटिक संदेश भी आया है, तो लेगी चेली पहले संदेश ला सुन लेती, तेकर फिर गोठ यात्रा बो।
1: वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हाँ तो देखिए अब लेगी चलिए आप मन कर जो मेला है चिट्ठी पत्रिया है वाला शुरू करत ही। और देखिए मैं पहला मेल लेत हूँ AI सा है इंदिरा विहार दिल्ली से, बेबी अंसारी निशा और W अंसारी। संगे संगे देखिए एक ठना हुआ है ये है चमनपुरा मोरबी से, प्रमिला जेटली दीपक और आशु जेटली। आओ एक ठन लेता हूँ पुराना तालाब डूमर गाँव से असमा नाज अंसारी, वलीउल्ला अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। देखिए आप मन लिखा था कि भाई आप मन का कार्यक्रम जो है हमन नियमित रूप से सुनती और संगे संगे देखिए फरमाइश करीना है एक ठन छत्तीसगढ़ी लोकगीत कर, तो लेगी चली इनकर पसंद कर छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला अब सुना थी हमन। तो सबले पहले आवा इनके पसंद के ये गीत ला सुन ली, तेकर आगू गोट करबू।

हाँ, तो सुगरकन छत्तीसगढ़ी गीत सुनें। और देखिए अगला जो मैं चिट्ठी पकड़े हूँ, यही सा है, धौलपुर छत्तीसगढ़ से। भेजवैया हैं रमेंद्र पांडे, अर्पणा पांडे, चित्रवर्षा पांडे, उत्कर्षा पांडे, तनुष, अनुश्रुत, किरण और तुषार पांडे। देखिए ये समस्त पांडे परिवार कर भाई स्वागत है हमर कार्यक्रम में। और संगे संगे भाई चिट्ठी लिखी ना भेजी ना है, इनकर कहना है कि आप मनकर कार्यक्रम कर हमन जो है नियमित श्रोता हन, आप मनकर जम्मो क्रमला हमन सुनथन, जेमे भेंट वार्ता के साथ साथ बहनी कर कहनी और कथा कहनी कार्यक्रम हमला बहुत अच्छा लगेल। जो कथा कहनी कार्यक्रम है वो कहनी ला हमारे लैका मन भी बैठ के बड़ा प्रेम से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई देखी हमार जो कहानी हमन लोक कथा पर आधारित कहानी आप मनला सुनवा थी भाई। पहले हमार जो सियान मन रहीन ते मन लैका मनला सुनात रहीन और वो कहानी हर बड़ा प्रेरणास्पद रही और इसने कहानी हमू मन जो है आप मन पर लेके आंथन। और लैका मन अगर सुनत हैं तो एक बार भाई बहुत अच्छा बात है कि लैका मन सुनी और जरूर कुछ ना कुछ सीखी। संगे संगे देखी एक ठन आओ हमर जगाई सा है, ये भेजवैया हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन। और लिखत हैं कि आप मनकर कार्यक्रम हमन नियमित सुनथन, हमन ला बहुत अच्छा लगेल, कोई भी गीत हमन ला एक ठन सुनवाए दी। तो लेगी चली अब इनकर पसंद कर एक ठन गीत ला सुना थी।

हाँ तो देखी गुलाब सिंह पैकरा और संगीता मंगल गाल सुगर अकन छत्तीसगढ़ी गीत ला सुनें तोर मोर भेंट हो ही बनियो। देखी ये अगला जो मुझे चिट्ठी आई सा है ये है भिजवैया है लखनपुर से उपेंद्र दुबे सुनीता दुबे दीपेश दुबे प्रियंका दुबे पूजा दुबे उमेश मिश्रा और शिवम दुबे। देखिए लिखता है कि हमन आप मन कर नया नया श्रोता हन और घर गुसाइन कार्यक्रम हमनला बहुत अच्छा लगेल। आप मन कर जो छत्तीसगढ़ी भोजपुरी गीत मनला सुनवा था ये हमनला बड़ मीठ लगेल। तो कोई भी एक भोजपुरी गीत हमनला सुनवा दी तो लेकिन चलिए इनका पसंद करिए गीतला सुनवाती। और अब देखिए एक गोटाऊ कहना चाहूँ कि भाई श्रोता बने हैं तो

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, कुटलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश, रेखा गुजराती, अभय गुजराती, वाइंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन मलाकार सुलरकर, ओम कुमार कुमकुम, सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार सांध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू रसेड़ा छत्तीसगढ़ से बच्चे लोग इधर उधर हैं, गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे। आप सभी के पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म। संगीतकार हैं आर डी वर्मन और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को आवाज़ दिया है किशोर कुमार ने।

अभी आपने सुना आपकी कसम इस फिल्म से गीत, और अगला मेल लेते हैं पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद्र माखीजा, गाफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गुफ्फार, डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी ग्राम पंचायत सिरकुतांग महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से, योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू घन्नू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया, सिमरन राजवाड़े जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज कागजल, सीमा मनवानी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आप सभी के पसंद का आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो।

दोस्तों, अभी आपने सुना शान और अलका याग्निक की आवाज़ में यह गीत। संगीतकार जावेद अख्तर और गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। इसी के साथ हम ईमेल की गूंज कार्यक्रम की कड़ी में अगला मेल लेते हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना एहसन इब्राहिम, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, ये ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम अमरावती से, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गौड़ा ने, अर्चना गोड़ा ने, प्रणय प्रसिद्धि हीरामन शेंडे, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी, बाबू भाई, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल, ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, ये पटोलिया दुर्ग से हमें ईमेल भेजा है, गुजरात राजकोट से रश्मि झरना भगत, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शदाब खत्री।

गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, लोरमी ग्राम चचेड़ी से इन्होंने हमें मेल भेजा है। स्वीटी और प्रतीक्षा दिल्ली से। बड़वार जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मेल भेजा है संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया ने। आप सभी की पसंद पर प्रस्तुत है फिल्म। आप सभी के पसंद पर आइए सुनते हैं मुकेश और साथियों की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म धर्म कर्म का यह गीत, इसके गीतकार हैं आरडी वर्मन और संगीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। इसी के साथ हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला फरमाइश। स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा, रोशनी शर्मा, पी एस नाहवरकर, निर्मला नाहवरकर, विशाल नाहवरकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगले, आशीष नलेश्वर, नगर नरवेल महाराष्ट्र से, ताज लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौंसर मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बनो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार, अनार नंदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश वर्मा, दीपेश वर्मा, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। आप सभी के पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म पिया का घर से गीत, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली फरमाइश।

मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से, आलोट जिला रतलाम एमपी से, जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्यन जायसवाल, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी तुमारिया, ग्राम लसूड़िया पता, तहसील नरसिंहगढ़ से, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र दांगी, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से, पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद पोपुरानी, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, प्रेम सा राजवाड़े सोमार

साय, मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार राम, राम खिलावन सिंह पैकरा, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद माठवाड़ा से, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत तानाजी जाधव, संचित वायाल याला सबमेट कसे कराएचे, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालन शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव, सिद्धेश्वर नगर। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चित्रंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू। आप सभी के पसंद पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओ, दोपहर के 2:15 हो चुके हैं और अभी आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।

लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताज़ा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810915।

0: एक एक पांच, दूसरा नंबर है +989120109109, तीसरा नंबर +989120109102, और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने

0: भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत

पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के आवाज में ये गजल। शायर हैं नाजीर बनारसी।

0: जी मैं एक सिटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सिटी
1: अगली कड़ी में जैसे पिक्चर हॉल में सिटी फसलन की आवाज में एक बाथरूम में नहाते हुए सिटी
0: ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें आज के हमारे केंद्र प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

शाम 5:05 में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम के 6 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युवाणी, युवा श्रोताओं का कार्यक्रम। शाम 6:20 में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गोधुली, इस कड़ी में आप सुनेंगे सरगुजिया लोकगीत। 6:30 में आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। 6:45 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रायपुर से। 7:20 में प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। रात के 8 हम पेश करेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात्रि 9 अनुप्रसारित करेंगे इवनिंग न्यूज अंग्रेजी में। रात 10 पेश करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात के 10:30 में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मनभावन। और रात के 11 आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के लिए कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में पुनः

मेरी बेब 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का इस सांध्यकालीन सभा में स्वागत करते हैं। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, सिंघरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 43 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 138 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, तेंदुचुआ, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट,

0: में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडईपानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भजन संध्या कार्यक्रम।

भक्ति की इस मधुर सरिता में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ईश्वर का स्मरण मन को शांति, आत्मा को शक्ति और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। जब भक्ति का दीप हृदय में प्रज्वलित होता है, तब हर ओर प्रभु की कृपा और प्रेम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आइए सांध्यकालीन सभा में हम याद करते हैं ईश्वर को।

मंगेशकर और साथियों की, गीत भरत व्यास ने लिखा था, संगीत था वसंत देसाई का। कहा जाता है कि जब मनुष्य संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करता है, तब भक्ति उसे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। भजन केवल शब्दों या स्वरों का संगम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सुंदर माध्यम है। भक्ति के सुर जब हृदय से निकलते हैं तो वे सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंच जाते हैं। आइए, भक्ति का वह दीप हम अपने मन में जलाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की थी। गीत भरत व्यास ने लिखा था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

भक्ति वह अनमोल धन है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। प्रभु का नाम वह मधुर स्वर है जो मन की व्याकुलता को शांत कर आत्मा को आनंद से भर देता है। जब हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलता है तब जीवन की हर राह सरल और प्रकाशमय प्रतीत होने लगती है। तो आइए इस सांध्यकालीन सभा में हम याद करते हैं प्रभु को।

अभी आप सुन रहे थे गीत गाता चल फिल्म का ये भक्ति गीत। आवाजें थी आरती मुखर्जी और जयपाल सिंह की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। जिस हृदय में दया, प्रेम और सेवा का भाव होता है, वही ईश्वर का सच्चा निवास होता है। प्रभु से कुछ मांगना ही भक्ति नहीं, प्रभु ने जो दिया है उसके लिए कृतज्ञ होना भी भक्ति है। तो आइए भजनों की इस पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु के मधुर नाम का रसपान करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे परिणय फिल्म का ये गीत शर्मा बंधु की आवाजों में। इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। युवा श्रोता सुनी अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रागिनी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम मशीन में बैठाकर ले जाना चाहती हूं एक ऐसे समय में जहां हर कोई वापस जाना चाहता है। नहीं नहीं, घबराइए मत, इस सफ़र के लिए किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी यादों का दरवाज़ा खोल दीजिए। चलिए कुछ पल के लिए लौट चलते हैं उन गलियों में जहाँ ज़िंदगी थोड़ी छोटी थी लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी, जहाँ जेबें खाली होती थी मगर दिल अमीर होते थे, जहाँ मोबाइल नहीं थे लेकिन दोस्त हर वक्त साथ होते थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आज हम बात करेंगे बचपन की गलियों की। क्या आपको याद है वो गर्मी की छुट्टियाँ जब सुबह घर से निकलते थे और शाम को माँ की डांट सुनकर ही वापस आते थे? वो गिल्ली डंडा, लुका छुपी, पिट्ठुल, साइकिल की रेस और खेलते खेलते अचानक याद आना कि होमवर्क भी करना है। उस समय घड़ी नहीं देखी जाती थी, बस सूरज देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि अब घर जाने का समय हो गया है। और सबसे मज़ेदार बात, तब नेटवर्क की नहीं दोस्ती की चिंता होती थी। अगर दोस्त नहीं आया तो सीधे उसके घर पहुंच जाते थे, और आज मैसेज सीन हो जाए तो जवाब का इंतज़ार करना पड़ता है। बचपन की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं थे, वे हमारी पहली पाठशाला थे। वहीं हमने दोस्ती सीखी, हारना सीखा, जीतना सीखा और सबसे ज़रूरी, गिरकर दोबारा उठना सीखा। लेकिन समय का पहिया घूमता रहा, स्कूल की घंटियां कॉलेज की क्लासों में बदल गईं, खेल के मैदान करियर की दौड़ में बदल गए, और कभी बड़ा होने का सपना देखने वाले हम आज कभी कभी फिर से बच्चा बनने की ख्वाहिश करने लगे। क्या अजीब बात है ना, बचपन में लगता था यार कब बड़े होंगे, और आज लगता है यार वो दिन भी कितने अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, क्या बचपन सचमुच पीछे छूट गया है? शायद नहीं, वो आज भी हमारे भीतर कहीं ज़िंदा है। जब बारिश में भीगने का मन करता है, जब पुराने दोस्तों की तस्वीर देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और किसी पुराने गाने को सुनकर हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, और शायद यही यादें हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं और कितना आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देख लेना भी ज़रूरी है, ताकि हम उन लोगों को याद कर सकें जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया, और उन गलियों को याद कर सकें जहां हमने ज़िंदगी के सबसे बेफिक्र दिन बिताए। बचपन की गलियां भले ही छूट जाएं, लेकिन वहां बिताए हुए पल उम्र भर हमारे साथ चलते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से याद करते हैं उन दिनों को और सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म छिछोरे से ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म छिछोरे से ये गीत। इस गीत के बाद चलते हैं हमारे अगले क्रम अचीवस में, जिसमें सुनेंगे इसरो साइंटिस्ट निशांत सिंह से बातचीत।

0: अचीवर सुन रहे हैं हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे क्रम अचीवर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रम अचीवर में हम लेकर आते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ अचीव किया हो। आज के इस क्रम में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अचीवमेंट से ना सिर्फ अपना अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम चांद तक गौरवान्वित किया है। तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं उन्हीं से उनका परिचय।
1: नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। मैं इसरो में अभी साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने इसरो के चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और आदित्य मिशन में अभी तक काम किया और आगे अभी वीनस और चंद्रयान 4 नाम का एक मिशन है उस पर भी काम कर रहा हूँ। मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आपसे बात करने का एक मौका दिया। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी आपका हमारे आज के इस क्रम में। तो निशांत, जैसा कि आपने बताया कि आप इसरो में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं
1: जी,
0: तो अंबिकापुर शहर से इसरो तक का आपका सफर कैसा रहा?
1: तो अगर मैं शुरू से अपना सफर बताना चाहूँ तो मेरा जन्म अंबिकापुर में हुआ था, लेकिन मैं उस समय मेरा परिवार जो है रामानुजगंज का एक गांव है पिपरौल, वहां से आता है। फिर वहां से हम अंबिकापुर आए पढ़ाई के लिए। फिर मैंने यहाँ पे मैरिन ड्राइव में और कार्मल स्कूल में पढ़ाई की
0: जी।
1: फिर उसके बाद मेरा नवोदय में चयन हो गया, तो मैंने 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई नवोदय में की थी, बस्तई में। फिर उसके बाद दक्षिणा फाउंडेशन है, उसके तहत मेरा सिलेक्शन हुआ था IIT JEE की कोचिंग के लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने फ्री में, मतलब 100% स्कॉलरशिप में वो लोग JEE की कोचिंग कराते हैं, तो उसकी वजह से मुझे 2 साल के लिए केरला जाना पड़ा था कोट्टायम में
0: जी।
1: तो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। फिर उसके बाद JEE देने के बाद मेरा सिलेक्शन IST में हुआ, जो कि इसरो का एक कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी।

0: जो त्रिवेंद्रम में है, तो मैं तिरुवनंतपुरम में फिर 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की।
1: जी
0: और क्योंकि वो इसरो की कॉलेज है, उसका निर्माण ही इसी कारण हुआ है ताकि उनको जो साइंटिस्ट चाहिए इसरो के लिए वो डायरेक्टली रिक्रूट किया जा सके वहाँ से।
1: जी जी,
0: तो वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया था मेरा इसरो में।
1: निशान जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्पेस साइंस की भी पढ़ाई की है, स्पेस देखने में बहुत खूबसूरत है, जो हम यहाँ से देखते हैं तो हमें इतना खूबसूरत लगता है, आपने तो उसकी पढ़ाई की है, आपने उसके बारे में बहुत गंभीरता से, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई की, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा है स्पेस एक्चुअल में।
0: स्पेस इज नथिंग, स्पेस में आपको जो दिखता है वो है नहीं कुछ।
1: जी जी,
0: बेसिकली इट्स एम्प्टीनेस आउट देयर विद सम प्लैनेट्स, कोई स्टार्स एवरीवेयर अराउंड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, देयर इज नथिंग एंड देयर इज एवरीथिंग।
1: जी,
0: सो आपको ये स्टडी करने का मौका मिलता है कि आप आए कैसे, ये सब कुछ कैसे निर्माण हुआ।
1: जी,
0: अभी जो हो रहा है, अगर आप एक तारा देख रहे हो, बहुत दूर एक ब्लैक होल भी देख सकते हो आप, एक न्यूट्रॉन स्टार देख सकते हो, आप जो देख रहे हो वहां से जो एक विजिबल लाइट है उसको आने में लाइट ईयर्स लगते हैं। तो आप इस यूनिवर्स का हिस्ट्री आप वहां से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि एक लाइट जो 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रहा है, मतलब जो घटना आप जो अभी देख रहे हो वो उतने साल पहले हो चुकी है। तो बेसिकली आप पास्ट देख रहे हो।
1: जी जी,
0: तो इट इज वेरी एक्साइटिंग इफ यू आर वर्किंग इन, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, ऐसे कुछ महसूस करने के लिए मिलता है जैसे आपको आप लगे कि आप बहुत ही छोटे से प्राणी हो इस बहुत ही बड़े ब्रह्मांड में।
1: जी, वो तो है कि हम एक छोटे से प्राणी है इस बड़े से ब्रह्मांड में। लोग कहते हैं कि चांद बहुत खूबसूरत है।
0: जी,
1: तो उसके बारे में बताइए कि एक्चुअल में चांद कितना खूबसूरत है।
0: एक्चुअल में चांद एक पार्ट है अर्थ का, जो बहुत सालों पहले अलग हो चुका है और एक्रीट होकर चांद बना है।
1: जी जी,
0: उसको हमारा सबसे नियरेस्ट बॉडी है वो सेलेस्टियल बॉडी। जैसा हम सोचते हैं कि हम कहीं और दूर जाके रहेंगे, तो एक फर्स्ट स्टेशन आउट ऑफ अर्थ अगर कोई होगा तो वो मून होगा। तो उसको स्टडी करना, वो कैसे इवॉल्व हुआ विद टाइम, वो आप स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
1: जी जी,
0: वहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं, अगर आप पता कर सको तो आपको समझ में आएगा कि वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो उसी के लिए मैंने चंद्रयान 3 पे जब मैंने काम किया था तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था APXS नाम का, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चांद पे जो एलिमेंट्स मौजूद है वहाँ पे जो तत्व है उनको स्टडी करने के लिए बनाया गया।
1: आपने बताया कि आपने चंद्रयान 3 में अभी हाल में ही कार्य किया है।
0: जी जी,
1: तो कुछ उसके बारे में बताइए कि उसमें आपकी क्या भूमिका थी।
0: तो मैं एक पेलोड साइंटिस्ट हूँ, तो मैं प्लेनेटरी मिशन होते हैं जैसे
1: हाँ।
0: कि चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, तो इनपे जो इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उनपे मैं काम करता हूँ, उनको डेवलप करना। जैसे मैंने बताया चंद्रयान के लिए APXS नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए था। तो मैं बेसिकली मेरा काम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जो इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करता है, जो डेवलप करता है और वहाँ पे जाके काम करता है। वहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे स्टडी करोगे, तो वो सब काम भी साथ में ही आ जाता है।
1: जैसे कि आपने बताया कि आपने चंद्रयान 3 में किस तरह से कार्य किया, तो ये तो आपने बताया कि आप अपने वर्किंग डेज में क्या करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप जब फ्री रहते हैं तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं।
0: मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मैं कुकिंग करना पसंद करता हूँ, साथ ही साथ स्पोर्ट्स देखना, खेलना नहीं देखना मुझे बहुत पसंद है
1: जी,
0: मूवीज देखना पसंद है।
1: अगर आप एक साइंटिस्ट नहीं होते तो आप और क्या करते, मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हैं।
0: अगर मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं, अगर मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं एक शेफ होता।
1: बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप,
0: अगर ये मेरा पैशन है, क्या होता है वो अलग बात है, बट मुझे आजकल पिछले कुछ सालों से कुकिंग में बहुत शौक है कोविड के टाइम से, तो मैं एक शेफ बनना पसंद करता।
1: इसरो तक के सफर में आपको आपके घर वालों से कितना सपोर्ट मिला?
0: बिल्कुल, मेरा, मेरी रीढ़ की हड्डी मानो तो मेरी फैमिली रही है
1: जी।
0: मेरे आसपास के लोग रहे हैं, मेरे परिचय के लोग रहे हैं, मेरे जान पहचान के लोग रहे हैं, जिन्होंने हर समय पे मुझे मदद की, हर समय पे मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आगे बढ़ता रहूं और जिस फील्ड में जाऊं, बस जहां मेरा मन हो उस पे अच्छे से काम करूं।
1: जो यूथ हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्हें स्पेस साइंस में अपना करियर बनाना है, वो कहाँ से शुरुआत करें, मतलब छोटे से जो शुरुआत बोलते हैं वो कहाँ से करें जिससे वो इसरो तक पहुँच सकते हैं।
0: डिफरेंट स्टेप्स आप ले सकते हो। एक तो है कि आपने, जैसा मैंने बताया कि मैं, आप 12th तक पढ़ाई कीजिए, फिर JEE दीजिए, IST जाइए। IST के बाद आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसरो में। एक सेकेंड वे है कि आप, अगर मान लो आप नहीं जा पाए वहाँ, कहीं और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको इसरो में जाना है, तो आपकी जब BTech की डिग्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ICRB नाम का एक एग्जाम होता है, जो इसरो की रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है वो एग्जाम कराती है, आप उसके तहत इसरो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो आप रिसर्च में आपका इंटरेस्ट हो
1: जी,
0: तो एज अ रिसर्चर आप काम करते रहो। फिर कभी ये हो सकता है, आप मान लो आप एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे हो, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगी इसरो की जो उसमें एक वैकेंसी निकालेगी, तो आप उसके तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी जा सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल वेज यू कैन एंटर इनटू ISRO सिस्टम।
1: निशान जी, बातें बहुत हो गई, हम बातें और भी आगे करेंगे, पर आइए उससे पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आप स्वदेश मूवी का एक गाना है, ये जो देश है मेरा,
1: जी
0: वो चला दीजिए।
1: तो आइए सुनते हैं निशान जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्रम अचीवर्स में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं इसरो स्पेस साइंटिस्ट निशांत सिंह जी से। तो निशांत जी, आप हमारे आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। आज इंडिया उस कंडीशन पे है कि आप जिस चीज में आपको काम करना है आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको अगर पेंटिंग करना है आप पेंटिंग कर सकते हो, आपको अगर डिजाइनर बनना है आप डिजाइनर बन जाओ, कोडिंग करना है कोडिंग कर लो, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप स्पोर्ट्स में भी आज बहुत सारे स्कोप है।

0: बेसिकली आप अपने दिल को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, जो इंटरेस्ट है वो करो और मन लगा के करो,
1: मतलब जो करो उसमें अपना 100% दो
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने निशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बात रखने का मौका दिया, थैंक यू।
1: हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप जो भी कार्य करें, जिन जिन मिशंस पे आप कार्य कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और इसी तरह आपका करियर यूं ही चांद पर पहुंचता रहे।
0: जी धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों इसी के साथ आज का क्रम अचीवर बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे क्रम अचीवर्स में इसरो स्पेस साइंटिस्ट निशांत सिंह से बातचीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म बागबान से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं देव नेगी और नेहा कक्कड़ की आवाज में फिल्म जुड़वा 2 से ये गीत। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीतकार है संदीप सिरोटकर।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बताते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पे और क्रम महफिल। अगर आप भी अपने पसंद की गजल की फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें पत्र के साथ साथ ईमेल भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है क्रम महफिल युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001 और हमारी ईमेल आईडी है mehfilair@gmail.com। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रागिनी चौबे को। नमस्कार।
1: अभी युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मिडीमीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले

0: پاکستان کے استھائی پرتندھی عاصم افتخار احمد کی ٹپنیوں کے جواب میں جموں کشمیر پر بھارت کا رخ دہرایا.
1: میں پاکستانی پکش کی ٹپنیوں کا اُلیکھ کرتا ہوں. یہ حیران کر دینے والا ہے کہ ایسے منچ پر جہاں راجنیتک مدوں پر سنتولت اور نسپکش چرچا کی امید کی جاتی ہے ایسی باتیں کہی گئیں. میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر پورن روپ سے بھارت کا گھریلو معاملہ ہے.
0: ایران کے تہران میں استھت بھارتی دوتاواس نے سرکشا استھتی میں سدھار کے باوجود بھارتیہ ناگرکوں کو جاری نئے پرامرش میں اگلی سوچنا تک سبھی غیر ضروری یاتراؤں سے بچنے کو کہا ہے. بہت آوشک ہونے پر ایران یاترا کرنے والوں کو اتیادھک ساودھانی اور سترکتا برتنے تتھا استھتی پر لگاتار نظر رکھنے کی صلاح دی گئی ہے. ستھانی ادھیکاریوں کے نردیشوں کا پالن کرنے کو بھی کہا گیا ہے. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की. श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की. उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की. बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की. चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था. गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है. इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा. इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है. प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये कार्रवाई कल शुरू की गई. ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है. पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए. घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया. मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: अभी समाचारों का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था. मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है. शाम के 6:05 हुए हैं. लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण. इस कार्यक्रम में आज का शीर्षक है मन की गांठें खोलना. वाचन और संकलन है पोलोमी हरि का.
3: मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है.

0: अपने जीवन में वह अनेक लोगों से मिलता है, रिश्ते बनाता है और विभिन्न अनुभवों से गुजरता है। कभी कभी कुछ घटनाएं, कटु शब्द, विश्वासघात या अपमान हमारे मन को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने भीतर शिकायत, क्रोध और वैर भाव संजो लेते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं को लंबे समय तक पकड़े रहने को ही मन में गांठ बांध लेना या ग्रज रखना कहा जाता है। किंतु जीवन को सुखद और शांत बनाने के लिए इन शिकायतों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है, तब क्रोधित होना स्वाभाविक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उस क्रोध को वर्षों तक अपने भीतर संजोए रखते हैं। धीरे धीरे यह शिकायत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं और बार बार वैसा ही दुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को ही मानसिक पीड़ा देते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई हो, वो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन हम अपने ही मन के बोझ तले दबे रहते हैं। शिकायतों और वैर भाव को पकड़े रखने का सबसे बड़ा नुकसान हमारी मानसिक शांति को होता है। लगातार क्रोध और नकारात्मक विचार तनाव को बढ़ाते हैं। इससे मन अशांत रहता है, नींद प्रभावित होती है और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। कई बार यह तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए मन की शांति बनाए रखने के लिए क्षमा और छोड़ देने की भावना विकसित करना आवश्यक है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि शिकायत छोड़ना किसी की गलती को सही ठहराना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम उस घटना को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देंगे। क्षमा का सबसे बड़ा लाभ सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं हमें मिलता है। जब हम किसी के प्रति मन में बैठी कटुता को छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से उठाया जा रहा कोई भार उतर गया हो। शिकायतों को छोड़ने के लिए आत्मचिंतन बहुत उपयोगी होता है। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। लोग गलतियां करते हैं, कभी अज्ञानता में तो कभी परिस्थितियों के दबाव में। यदि हम दूसरों की कमियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे भीतर सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच और अपने प्रियजनों से संवाद भी मन की कटुता को कम करने में सहायक होते हैं। महान व्यक्तियों ने सदैव क्षमा और उदारता का संदेश दिया है। उनका मानना था कि क्रोध और द्वेष मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं, जबकि क्षमा उसे मजबूत और परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति शिकायतों को छोड़ना सीख जाता है, वह जीवन को अधिक सहजता और प्रसन्नता के साथ जी पाता है। अंततः शिकायतों और वैरभाव को छोड़ना आत्ममुक्ति का मार्ग है। यह हमारे मन को शांति, रिश्तों को मधुरता और जीवन को सकारात्मकता प्रदान करता है। इसलिए हमें अतीत की कटु स्मृतियों से चिपके रहने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में नहीं बल्कि प्रेम, समझ और संतोष के साथ ही जीना सच्ची बुद्धिमानी है।
1: अभी विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जा रहा था। शीर्षक था मन की गांठें खोलना, वाचन और संकलन पोलोमी हरि का था। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल लेबर देहे सलाह।

और महिला और बाल विकास विभाग ह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा विषय खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले लागू हो जाही। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार खातिर ग्राम सभा, चौपाल, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करे जाते। उन्हें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूह के मायलोगिन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन घलो लोगन मल्ला योजना के जानकारी देमा जुट गए हैं। उन्हें ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर प्रशिक्षण बैठका और ग्राम सभा लगाए जाते जेमा गांव के लोगन मल्ला योजना के जानकारी और फायदा के संबंध में बताए जावत है। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में गांव के लोगन मल्ला मानव श्रृंखला बना के और स्लोगन ले लोगन मल्ला ये योजना ले जुड़े खातिर प्रेरित करीन। ये दौरान गांव के मनखे मन पात्र परिवार ला योजना के फायदा दिवाए और ज्यादा ले ज्यादा लोगन तक एकर जानकारी अमराय के संकल्प लीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि 1 जुलाई ले लागू होवैया वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांव के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होही। उमन बतैन कि राज्य मंत्रिपरिषद हा ये योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप ला मंजूरी दे दे है। एसो अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल ले के सलाह दे है। विभाग धान के जगह मा दलहन तिलहन फसल के खेती ला बढ़ावा देबर कहे है। कृषि विभाग के मुताबिक कमती वर्षा के संभावित स्थिति मा अरहर, मूंग, उरीद, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसन फसल ले जा सकत है। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक दलहन और तिलहन फसल कमती लागत में बने उत्पादन दे के संग भुइया के उर्वरा शक्ति ला सुधारे में महत्ता के भूमिका निभाते। प्रदेश के सरकारी स्कूल मन में अवैया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होही। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हो बतैन कि 1 अप्रैल ले सत्र शुरू होय ले लैका मन पहलीच ले मानसिक रूप ले तैयार होही। उमन बतैन कि लैका मन ला 1 अप्रैल ले ही किताब, स्कूल ड्रेस और साइकिल बांटे जाही। उमन यहू कहिन कि सत्र ला जल्दी शुरू करे के उद्देश्य पाठ्यक्रम ला बेरा रहत पूरा करना और पढ़ैया लैका मन के परीक्षा के नतीजा में सुधार लाना है। स्कूल शिक्षा मंत्री है बतैन कि 1 जुलाई ले सबो शिक्षक और कर्मचारी मन बर VSK ऐप मा पंजीयन और उपस्थिति जरूरी होही। जुलाई महीना के वेतन ऐप मा दर्ज उपस्थिति के आधार मा दे जाही। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल ले देश भर में वंदे मातरम कैंप लगाही। एकर उद्देश्य युवा मल्ला भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा के संबंध में समझ बढ़ाए के मौका देना ही। एमा चुने गए जिला में 20 शिविर लगाए जाही। हरेक शिविर में 15 से 29 बच्चर आयु वर्ग के 150 युवा भाग लिही। हरेक शिविर में पूर्वोत्तर समेत 6 राज्य के युवा संघरी। मंत्रालय है यहू बताए है कि कम से कम 50% प्रतिभागी में महिला और सामाजिक रूप ले पिछड़े वर्ग के लोगन होही। पहली शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता मा काली ले लगाए जाही। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारी मन के बैठका हुई। बैठका में संगठन और सरकार ले जुड़े आने आने मुद्दा में गोट बात हुई से। ये दौरान जिला में चला संगठनात्मक काम और अभियान में लेके पदाधिकारी मल्ला दिशा निर्देश देगी। ये बैठका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहीन। उन्हें आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के बैठका घलो हुई। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा के केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था ला खत्म कर दे है। अब लुगरा बिसाए बर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता मा भेजे जाही। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े है विभाग ला निर्देश दिन है कि लुगरा के डिजाइन पहली जैसन रखे जाए जेखर ले प्रदेश भर मा एक रूपता बने रही। उन्हें लुगरा ला पसंद खुद कार्यकर्ता और सहायिका मन कर सकी।
सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा होए के मौका में छत्तीसगढ़ में 29 जून ले 6

0: जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाही। ये आयोजन के तैयारी ल लेके सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ह मंत्रालय में विभागीय अधिकारी और आने सहकारी संस्था महासंघ के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके जरूरी निर्देश दीन। श्री कश्यप ह बतायन कि हफ्ता भर तक चलैया ये कार्यक्रम में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार ला प्राथमिकता दे जाही। संगे संग लोगन ला सहकारी योजना और उपलब्धि के संबंध में बताए जाही। उमन अधिकारी मन ले कहिन कि सहकारिता सप्ताह के बिरा किसान, महिला स्व सहायता समूह, दुग्ध उत्पादक, मत्स्य पालक, वनोपज संग्राहक और हस्तशिल्पी मन के भागीदारी तय करे जाए। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम होवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है रईपुर में उखर फोटो में फूल माला चढ़ा के उमल्ला सुरता करीन। ये बेरमा मुख्यमंत्री है किहिन कि रानी दुर्गावती के वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास के अमूल्य धरोहर है। श्री साय है किहिन कि रानी दुर्गावती के आदर्श ले प्रेरणा लेके हमल्ला विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प ला और ज्यादा दृढ़ता के संग आगू बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय पर 36वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह काली नई दिल्ली में रखे जाही। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये समारोह के अगुवाई करही। श्री मेघवाल जितैया विद्यार्थी और स्कूल ला इनाम दिही। क्षेत्रीय स्तर में प्रतियोगिता में अव्वल अवैया 20 केंद्रीय विद्यालय मन में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय घलो शामिल है। रायपुर के तिलकनगर शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के छात्रा महिमा राजपूत के चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सैट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुई है। महिमा 23 अगस्त ले नई दिल्ली में होवैया 8 दिवसीय शक्ति सैट कार्यशाला में भाग ली। ये मिशन में आने आने देश के 108 चुने गए छात्रा मन भाग लेवा थे। एमा सबो छात्रा मन के मिल के शक्ति सैट उपग्रह बनाही। एमा ले एक सैटेलाइट ला चंद्रमा के क्षमा स्थापित करे जाही। उन्हें दूसर चंद्रमा के सतह में उतरे के उद्देश्य ले बनाए जाही। ये सैटेलाइट के प्रक्षेपण इसरो कोती ले अक्टूबर में श्री हरिकोटा ले करे जाही। महिमा के ये उपलब्धि में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह उमल्ला शुभकामना दिन है। अंबिकापुर जिला के बिसुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह ले पाछू संजा 11 जिन अपचारी बालक फरार हो गए। इकर उम्र 14 ले 17 बछर के बीच बताए जाते। घटना के जानकारी मिलते गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उखर तलाश में जुट गए हैं। बताए जाते कि फरार अपचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिला के रहवैया हरें। एमाले कुछ एक के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसन मामला दर्ज है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के मरवाही थाना क्षेत्र में पाछू 20 जून के होए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामला में पुलिस अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन व्यवसाय ला छोड़े के बदला 20 लाख रुपया के फिरौती मांगे रहीन। आरोपी मन तीरले पुलिस हथियार, मोबाइल फोन और एक चौपहिया गाड़ी बरामद करे है। पुलिस आने फरार आरोपी मन के तलाश करत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मन ला मौसम के मुताबिक फसल ले बर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा बिसाए खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार का अनुप्रसारण हमारे रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। मिडवेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों कार्यक्रम गोदली। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सरगुजा लोकगीत के रूप में। ये झूमेर गीत, गायक कलाकार हैं राम भजन और साथी।

गोदली कार्यक्रम में आप सादरी लोकगीत के रूप में सुनिए भिनसरिया कर्मा गीत। गायक कलाकार हैं ठाकुर मिंज और साथी।

अभी आप सुने थे सादरी लोकगीत के रूप में भिनसरिया कर्मा गीत, गायक कलाकार थे ठाकुर मिंज और साथी। इसी के साथ गोदली कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

दोस्तों, जैसे जैसे सूरज अपनी सुनहरी किरणों को समेटकर क्षितिज की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे शाम अपने साथ अनगिनत रंग लेकर आती है। यह वह समय होता है जब दिन भर की भागदौड़

धीरे धीरे थमने लगती है। आसमान रंगों की नई तस्वीर बनाने लगता है और पंछी अपने पसीरों की ओर लौटने लगते हैं। उनके पंखों की उड़ान और घर लौटने की खुशी प्रकृति के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक होती है। तो आइए शाम के इन सुनहरे रंगों को हम महसूस करते हैं इस गीत में। आज की शाम मैं हूं आप सभी के साथ तरुण।

अभी आप सुन रही थी वंश फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत समीर ने लिखा था, संगीत था आनंद मिलिंद का। दोस्तों, शाम का समय अपने आप में एक खूबसूरत संदेश लेकर आता है। यह हमें बताता है कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, कुछ पल ऐसे जरूर होने चाहिए जो सुकून के नाम हो, अपनों के नाम हो और उन मुस्कुराहटों के नाम हो जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। तो आइए इसी बात पे सुनते हैं ये गीत जो आपकी शाम को बहुत हसीन बनाएगा।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: इसी के साथ माधुरी कार्यक्रम आज बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण। मीडी बेब और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना

0: न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों की को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप को मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को 1 अप्रैल से ही पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण किया जाएगा।
6: 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार होगा, जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज है, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे। तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा। 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा। तो कल ही हमने बैठक में कहा है कि सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है। कल हमने

0: बैठक में कहा है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें।
1: स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कम से कम 50% भागियों में महिलाएं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का PMC केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि साड़ी का डिजाइन पहले जैसा रखा जाए ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहेगी। वहीं साड़ी के कपड़े अथवा अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता और सहायिकाएं कर सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों और अभियानों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आज ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बैठक भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी है। विभाग ने धान के स्थान पर दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन के साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कम पानी वाले क्षेत्रों में धान के बदले दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत समर्थन मूल्य पर की जाती है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही लोगों को सहकारी योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रायपुर के तिलक नगर स्थित शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा महिमा राजपूत का चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। महिमा 23 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8 दिवसीय शक्ति सेट कार्यशाला में भाग लेंगी। इस मिशन में विभिन्न देशों की 108 चयनित छात्राएं भाग लेंगी। इस कार्यशाला में छात्राएं मिलकर शक्ति सेट उपग्रह का निर्माण करेंगी। इनमें से एक सेटर

0: लाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की सतह पर उतरने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण इसरो द्वारा अक्टूबर में श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। महिमा की इस उपलब्धि पर रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 अपचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फरार अपचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज हैं। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक चारपहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना पीएम MKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। दुर्ग जिले के धमदा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जशपुर जिले में खनिज विभाग ने शंख नदी के तट पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की है। इस मामले में विभाग ने 1,46,000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही VBG रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी। और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: अभी प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे।

मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे ही लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की तीसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद सुबह, माफ कीजिएगा, शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम।

रजनीगंधा शाम 7:20 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। साथ ही चर्चा होगी जंगल, जैव विविधता और मानव हस्तक्षेप पर। आजकल में सुनेंगे लौकी की खेती से अधिक लाभ कैसे लें, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था, पोषक अनाजों से समृद्धि, पोषक अनाज और कुपोषण से लड़ाई में भूमिका। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8:00 सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर आनंद लीजिए का चित्रपट संगीत का। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम ईमेल की गूंज। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन। ये तो थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज की शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे आराधना कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम। सुबह 6:35 पर आप सुनेगा रामचरितमानस का गायन। 6:45 पर आप सुनेगा खेती की बात। जानकारी का विषय होगा खरीफ में उड़द की खेती। सुबह 7:00 आप सुनेंगे गूंजे जंगल कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:15 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन होगा सुबह 9:00। 10:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। सुबह 11:05 पर आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनेगा। दिन में 12:00 आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम चयन। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। बातचीत होगी नई तकनीक नई सीख को सिखाता है आगे बढ़ाता है। साथ ही सुनेंगे गुलदस्ता क्रम घरेलू नुस्खे गीत संगीत। दिन में 1:40 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गीत गंदा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनेगा भजन संध्या कार्यक्रम। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोदली। शाम 7:05 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। शाम 7:20 पर आप सुनेगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। इसमें शाम 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कल रात्रि 8:00 आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर कल आप सुनेगा ईमेल की गूंज कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सूर्यामनी। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेगा मन भावन कार्यक्रम। यद्यपि श्रोताओं हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। इसी के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। इसमें आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद के गाने उनके नाम के साथ। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन।

मिडवीव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

एक दफे फिर मैं हाजिर हूँ राव रूपन का दोस्त धर्मू भैया चौपाल में। देखिए थकल बिदाल रोरे मन भी आए हो गांव भाई, खेती पाती करके तो सब जन एक जग जब जुटे रहती ना तब कार्यक्रम सुनने में मजा आए। जानकारी और मनोरंजन कर खजाना हवे हमार कार्यक्रम चौपाल। देखिए धर्मू भैया इसे तो गीत संगीत तो होबेज करी और मुलाकात करवा हूँ किसान भाई से अंबिका प्रसाद जो कि जजगा कर रहोइया हैं और खीरा वर्गीय फसल कर खेती करके कैसे फायदा कमाता हैं। ओकर अलावा चर्चा हुई संगे संगे मंडी भाव मौसम कर जानकारी और आखिर में सवाल जिनकर सही जवाब आए रही उनकर नाव वाला मैं जरूर ले हूँ। तो देखिए कोनो ना कोनो विषय पे हमन गोट बात कर थी कार्यक्रम कर शुरुआत में। हमर जो गांव घर कर महिला हैं प्राणी हमें ओमन सशक्त बनाता हैं ताकतवर बनाता हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर माध्यम से। हमर यहाँ का है स्वयं सहायता समूह रौरे मन भी जानत हो बेकर जरिए संगठित कर ओमन ला आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता हैं।

तो होबेज करही। और मुलाकात करवाऊँ किसान भाई से अंबिका प्रसाद, जो कि जजगा कर रहोइया हैं और खीरा वर्गीय फसल कर खेती करके कैसे फायदा कमाता हैं। ओकर अलावा चर्चा हुई संगे संगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और आखिर में सवाल, जिनकर सही जवाब आए रही उनकर नाव ला मैं जरूर ले हूँ। तो देखी कोनो ना कोनो विषय पे हमन गोट बात कर थी कार्यक्रम कर शुरुआत में। हमर जो गांव घर कर महिला हैं, प्राणी हमें ओमन सशक्त बनाता हैं, ताकतवर बनाता हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर माध्यम से। हमर यहाँ का है स्वयं सहायता समूह, रौरे मन भी जानत हो, बेकर जरिए संगठित कर ओमन ला आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता हैं। एकर का है आसान रूप में कहब ऋण मिल जाए, लोन मिल जाए ओमन ला, और कौशल प्रशिक्षण कृषि खेती में पशु सखी जैसा भूमिका से महिला मन कर जो है कमाई में तो वृद्धि होता है और ओमन आत्मनिर्भर बनाता हैं, बलवान बनाता हैं। देखब कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार एक है कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे कि खेती में, पशुपालन में, जैविक खेती में और हस्तशिल्प जैसे कि जूट बैग टोकरी बनाना, ये सब क्षेत्र में जो है ना महिला मल्ला प्रशिक्षित करल जाता है, ट्रेनिंग देल जाता है, जेकर माध्यम से ओमन जो है अपन कमाई धमाई भी बढ़ाता है ट्रेनिंग लेके। फिर देखा अब लखपति दीदी, ये योजना कर माध्यम से जो है महिला मल्ला अपन खुद कर जो है व्यवसाय शुरू करे के लिए आर्थिक मदद आसान रूप में जो है लोन दिलवाल जाए, जेकर से वो लखपति दीदी बनने के राह में एकदम आगू बढ़ता है। ओकर अलावा देखब कि डिजिटल मार्केटिंग, सुने में तो समझ नहीं आए बाकी का है डिजिटल, जैसे देखा थी ना आजकल हमार तो शहर में जैसे अंबिकापुर में देखा थी ठेला खोमचा में भी पैसा कर लेन देन जो है डिजिटल माध्यम से होता है, चाहे वो 10 रुपया 20 रुपया से लेके बड़का बड़का पैसा का आमा भी खरीदे थी तो वह हर धरी सा है, क्यू आर कोड धरा है दल के में 10 रुपया 50 रुपया जो डालना है डाल दा। तो स्वयं सहायता समूह द्वारा जो है ना निर्मित उत्पाद कर ब्रांडिंग और ओमनला ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेच के बड़ा ओमनला बाजार मिलता है। ओकर अलावा देखा सामाजिक और नेतृत्व विकास, सामूहिक शक्ति जो है SHG से जुड़कर महिला मन अपन बात खोल कर रखे कर जो है ओमनला मंच भी मिलता है। फिर देखब अपन स्वयं से निर्णय ले के क्षमता कि आर्थिक रूप से जो है ना स्वतंत्र होने के कारण ओमन अपन परिवार और समाज में जो भी फैसला जो है प्रमुख फैसला लेकर स्थिति में अब जो है ना महिला मन बहुत आगे आता है, अग्रसर होता है कि हमन जो है फैसला ले सकत ही। बैंक तक भी देखब आसान पहुंच होगी से महिला मन कर सीधा जुड़ाव बैंकिंग प्रणाली से होई से, जेकर से बचत ला समझता है ओमन और निवेश ला समझता है कि कैसे कैसे करके हमन जो है लाभ ले सकता है। ये जो मिशन हवे ना विशेष रूप से हमर महिला मल्ला सशक्त बनाए बर और सामूहिक संस्थागत कहब एक ठन प्लेटफार्म जो प्रदान करे बर केंद्रित हवे, ताकि उमन अपन आजीविका बेहतर बना सकें और अपन जीवन स्तर में सुधार ला सकें। देखी बहुत बढ़िया योजना हवे, मिशन हवे, एकर में का है कि जैसे कि मैं बताया ना कि आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार, आसान रूप से ऋण मिल जाए, समूह से जुड़ल जो महिला मन है बैंक से बहुत कम ब्याज पे या फिर बिना गारंटी के उमल्ला लोन भेटाए जाए। फिर ओकर अलावा कब छोटा छोटा उद्योग कर स्थापना कर सकते हैं, हमारे यहाँ कर महिला जैसे कोनो सिलाई करता है, अचार बनाता है, अगरबत्ती कर उद्योग करता है, पापड़ होता है कर उद्योग करता है, कृषि उत्पाद पशुपालन जैसा छोटा छोटा व्यवसाय जो है शुरू करके अपन आयला बढ़ाता है। तो और का है घर में भी मदद करता है, देखिए एक महिला रहल तो वाला तो का है कि शुरू से ले के कहब ना कि दोनों खुटला भी पुराना रहे, एक तो का है कि अपन मायके में जब रहते हैं वो घनी भी ओमन काम बुता करते रहते हैं। ओकर अलावा देखब अब तो लड़का छेवा लड़की छेवा में कोई अंतर नहीं है, इतना बढ़िया पढ़ता है कि मैं तो देखता हूँ लड़की छेवा मन ही आगे आता है, ज़्यादा पढ़ता है और ओमन अब लड़का छेवा मन से डाक जाता है और कोनो भी काम में कहब ना ज़्यादातर जो है भागीदारी निभाता है, जो कि बहुत बढ़िया आदत है। ओमन में ये कहा कि ये आजीविका मिशन कर माध्यम से ना जो स्वरोजगार स्वयं सहायता समूह कर जो करता है ओकर से आदत बचत कर आदत होता है, हर महीना कहब ना छोटा छोटा बचत करे से का है कि कभी हमन जग जब कहीं पर पैसा डूबिया कर जरूरत पड़ जाए, अचानक से कभी जरूरत पड़े तो वो समय जो है महिला मन कर जो है बहुत पैसा हर काम आएल
और

कहब कि सरकार शासकीय जो योजना हवे ओकर सीधा लाभ मिलता है। कहब कई गांव में जो है ना समूह में गांव में उचित मूल्य जो है राशन के जला हमन कथी दुकान जो है आंगनबाड़ी में देखब पोषण आहार रेडी टू ईट जला हमन कथी ना ओला बनाए में फिर मध्यान्ह भोजन पकाए कर काम भी जो है ना महिला मन करते हैं ये मन से मल्ला आमदनी होल तो बहुत फायदेमंद योजना हवे। केकर से का है कि स्वयं सहायता से जुड़े जागरूकता कर प्रसार भी हो लेकर से देखब कि समूह कर माध्यम से महिला मल्ला शिक्षा स्वास्थ्य पोषण और अपन कानूनी अधिकार के प्रति जो है जागरूक भी करल जाए। तो बिल्कुल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमर जो है ग्रामीण महिला मल्ला सशक्त बनाता है और आगे बढ़ाता है और निश्चित रूप से आगे बढ़े भाई लड़की छुआ जो रही तो मल्ला तो का है कि एक जगह नहीं दोनों जगह ला पुराना रहल जब ससुराल में जा अगर महिला पढ़ल लिखल रही समझदार रही जागरूक रही तो आए वाला जो पीढ़ी है जो अपन बच्चा मल्ला देखी सबसे पहला स्कूल तलेर का छुआ मन कर कहब कि घरे रहल तो घर कर जो लोग हैं माँ हैं बाप हैं उमन अगर जागरूक हैं पढ़ल लिखल हैं तो लड़का लड़की मल्ला सही जो है दिशा दे सकते हैं और आगू बढ़ा सकते हैं। स्कूल कर बात करी तो चली से ध्यान रखब कि स्कूल कर बच्चा मन कर स्कूल खुल गई से भाई तो उमला बढ़िया से भेजना है बढ़िया साफ सुथरा अनुशासन सिखाना है बढ़िया कपड़ा लत्ता पहना के अच्छा भेजना है। अजय का है कि नवा नवा खुली से तो जाए में तनिक कोताही करते हैं खासकर जो प्राइमरी स्तर के रहते हैं प्राथमिक स्तर के लेकर नहीं जाए खोजे उमला लहरा के फौसला के कैसनों करके भेजना है और पढ़ना लिखना जरूरी हवे तो ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है भाई। सुनल जाए एक ठंड सुघरकन छत्तीसगढ़ी गीत गाता है गुलाब सिंह पैकरा और उनकर संगता हरे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ भाई, ये संदेश ला सुनें और एक पहले बड़ा सुघर कन गीत सुनें। गुलाब सिंह पैकरा और उनकर संगता कर गाल रही तोर मोर भेंट होही दरिया किनारे। तो देखिए भाई, भेंट होए बर का है, दरिया मतलब बचाना भी जरूरी है, सुरक्षित करना, संरक्षित करना जरूरी है। देखब कि हमार यहाँ जब पहले जंगल झाड़ी ज़्यादा रहीस, मतलब प्राकृतिक संतुलन रहीस, तो वो समय देखब कईन प्रकार कर जो है जंगली जीव रहें। तितली मन तो आजकल देखे पर भी नहीं भेट आते हैं, गौरैया मन देखे पर नहीं भेट आते हैं, कई कुछ जो है पक्षी मन लुप्त हो जाते हैं, जानवर मन लुप्त हो जाते हैं, ओकर कारण है पर्यावरण कर बगड़ल दशा। दिनों दिन जंगल कर कटाई और ये दशा ला जो है हमला सुधारना है और एक जो है संरक्षण पर अपन तरफ से जितना भी योगदान हो सके करना है। हमारे गाँव घर के लोग या किसान भाई तो ज़्यादातर ये कर सकते हैं, पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो अभी मैं गुड बात करूं कि हमर जो जंगल और जो हमर मन से मन कर आप हस्तक्षेप एकर में जो है का प्रभाव पड़ी। देखब कि मन से हमन अपन जरूरत बरका है ना, जैसे शहरीकरण हो, खेती बाड़ी में विकास हो, औद्योगिक विकास हो, कारखाना मन खुले ना, उद्योग वगैरह, तो जंगल कर जो अंधाधुंध जो कटाई होइस ना, ये हस्तक्षेप से जो प्राकृतिक जो ओमन के घर रहीस, आवास रहीस, ओमन नष्ट होत गईन। और जेकर से का है जैव विविधता अथी हमन तेजी से कम होता है और हमार जो ये तंत्र का संतुलन जो है ना बिगड़ता है। तो का है कि देखब कि मानव हमर जो मन से मन का हस्तक्षेप करे से जंगल और जो जैव विविधता है ये कैसे प्रभावित होल। एक तो का है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेल, आवास कर नुकसान होल, पेड़ कर कटाई और जो खेती कर जैसे विस्तार से जो जानवर मन कर प्राकृतिक घर रहना ओमन जो है छीन जाते हैं, जेकर से वे मन का है ओमन विलुप्त होता है। हमारे यहाँ देखब कि जंगल कर जो इंसानी दखल के कारण जो भोजन कर के तलाश में, खाए कर तलाश में जंगली जानवर जो है रिहायशी इलाका रहे वाला जगह पहुँच जाते हैं,

देखा थी ना हमर यहाँ तो कार्यक्रम है हमर हाथी हमर गोठ। देखा हाथी मन बदक के इते उते जो है शहर बाट भी घुस जाते हैं। ओकर कारण है का है कि वो मन से तो है नहीं मन उतना कि भाई अपन यहाँ का घर मन कर कोई विशेष नहीं है कि मन से कहूँ जाए तो अपन भाई कभी भी घर वापस आते हैं। वो तो चरे वाला विचरे वाला जीव है। तो ओमन के जब रहे कर जगह में हमन अपन जो है खेती कर पाँच हम से या खेतवा बना दें या फिर अपन घर का निर्माण कर लें तब ओमन भाई उतहे रास्ता से जाते हैं और कहते हैं कि मन से मन कि भाई हमार घर ला तोड़ दईस कि हमार ला खेती ला खाए दईस। तो गलती ओमन कर नहीं है, गलती हमर है कि हमन ओमन कर रहे वाला जगह ला छीने ही जिकर कारण से एकस होल। ओकर अलावा देखा औद्योगिक कचरा बन कर कटाई से का है ना और कार्बन उत्सर्जन से जैसे ये फैक्ट्री वगैरह जो है उद्योग से निकले तो जंगल और जो सूक्ष्म छोटा छोटा जीव है ना एमन बुरी तरह जो है प्रभावित होते हैं। तो हमला ध्यान देना है कि भाई हमला का है कुछ उपाय भी करना चाहिए कि मानव का हस्तक्षेप हमेशा जो है विनाशकारी ना हो ओला हमन सही तरीका से जो है हस्तक्षेप कर सकत ही। जैसे संरक्षित क्षेत्र का निर्माण हमला करना चाहिए, वन्य जीव जो है अभ्यारण वगैरह नहीं बना रहे लोकर स्थापना करना है, पौधा जो पौधा मन है और जानवर कर प्रजाति है मतलब सुरक्षित रखना हवे। कुछ देखिए कि अपन दिमाग से भी हमला सोचना चाहिए, हर काम जो है सरकार कर ऊपरे नहीं रहे कि सरकार इसे करी तो ओकर काम ला हमन बढ़ावा देना, हमन का खुद कर जो है दिमाग इतना चलना चाहिए कि का करे से विनाश है और का करे से विकास है। तो हमला ध्यान देना है कि जंगल जो है हमार पृथ्वी कर जो है ना जीव जंतु पौधा और सूक्ष्म जीव जो रहते हैं ओकर लाखों प्रजाति मन कर घर हवे। हालांकि देखब कि जैसे बढ़ता आबादी है या औद्योगिकरण है या वन कर कटाई के कारण जंगल में हमर जो मानव हस्तक्षेप होइस ना एक कारण जो है प्राकृतिक संतुलन जो है बहुत तेज़ी से नष्ट होता है। तो हमला ये सब ध्यान देना है जैसे कि हमन का कर सकत ही कि जंगल कर जो पारिस्थितिक तंत्र हो जैसे साफ हवा है या पिए कर पानी हवे या जलवायु नियंत्रण है ये सब जो है आवश्यक जो सेवाएँ हैं ना इला हमन वापस लाना है। बहुत सारा देखब कि खाली लिखरी गोट बात करे से कुछ नहीं होल, हमला ध्यान ये करना है कि खाली सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमला खुद से भी आगे आना पड़ी, खुद से सोचना पड़ी कि का चीज़ में विकास है का में विनाश है, कौन कस करे से हमन जो आए वाला पीढ़ी ला वापस से जो है कुछ हद तक जो है पर्यावरण का जो है संरक्षण जो है कर सकी, ये बात कर ध्यान देना पड़ी। और पर्यावरण का संरक्षण योगदान तो हमारे गांव घर के लोग जो हैं ज़्यादातर जो है पेड़ पौधा लगाएं और ओकर तिहा करें। अभी देखब खरीफ में पानी बरखा तो भाई भाई आगे से खेती पाती में राउर मन लग गई, ये बरखा घनी लाखों करोड़ों पेड़ अपने अपन जो है प्रकृति हर जन्मायल बाकी ओकर तिहा हमन नहीं कर पाई। अगर हमन खाली ओकर भी तिहा कर पाबना तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में अपन योगदान दे सकती। गोट बात तो कार्यक्रम में होते च रही, देखब कि मैं बोले रहना कि किसान भाई से मुलाकात करवाऊँ अंबिका प्रसाद जी से तो काका गोट बात हुई से सुनल जाए।

0: देखिए, मैं आज आए हूँ गांव जजगा, जो मैनपाटकर तराई गांव है, और यहाँ एक बहुत अच्छा प्रगतिशील किसान है। और बता दूं कि ये भूतपूर्व सरपंच भी रहीं और साथे साथे भूतपूर्व ये BDC भी रहीं। राजनीति के साथ साथ खेती बारी में भी इतना मस्त ध्यान देते हैं और बहुत ही अच्छा जो है आर्थिक लाभ कमावत है। परिचय जानी, राउर अपन नाम ला बताइए।
1: मेरा नाम अंबिका प्रसाद है।
0: हाँ अंबिका भैया, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जिसे मैं अभी देखी बताया दूं किसान भैया बहनियों की हमन उनकर बारी में ही बैठे हैं और खेत में बढ़िया लेकर दे खीरा लगाई ना है और बहुत आधुनिक तरीके से खीरा कर खेती करी ना है। तो गोइड बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो अंबिका भैया ये बताई कि ये जो राउर खीरा लगाए हैं ये कब लगाए रहे हैं?
1: 10 जुलाई के लगाए के बाद मैंने 35 दिन आसपास में फल देना चालू कर दे भैया।
0: अच्छा, तो अभी ये तो फल कर स्थिति में ना जो
1: अब 24 दिन 27 दिन हो गए, ये 1.5 महीना में कम्प्लीट हो जाए भैया अपन मुनाफा कमवा के और देखे।

0: हाँ 8 से 10 रुपया भी बिचाएगी तो 1.5 महीना में आदमी 2 लाख 1.5 लाख रुपए कमाए लेकिन तो का नुकसान।
1: और मन में कैसे ये विचार है इसकी, नहीं खीरा कर खेती करना?
0: सबसे कम दिन में यार पैसा देकर काम कर रहा
1: हूँ, नकदी फसल,
0: नकदी फसल है हाँ। सबसे कम दिन में 40 से 45 दिन में खत्म काम है।
1: अच्छा
0: हाँ। और कर भी जोताई कोड़ाई जो है रोटावेटर से कराए रहे, रोटावेटर के बाद में डुगुर खींचे पर है हमारे व्यवस्था है।
1: अच्छा
0: ट्रैक्टर द्वारा सब है मोरजग, खाद लगा के मल्चिंग बिछा देना है और गिलास के द्वारा छेदा कर देना है भैया।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ।
1: तो मैं देखा तुम एकदम पूरा प्लास्टिक लगाया कि एकदम सर लगा लाइन से दे रहा और जो है लगा ही कै बहेला जोतना पड़े इस खेत ला?
0: 3 बार जो जोतक पड़े भैया।
1: अच्छा हाँ। जोते के बाद फिर डुगरू बनाए?
0: हाँ डुगरू बनाए भैया। अच्छा। डुगरू के बाद खाद उद लगाए।
1: तो ये तो प्रमाणित बीज हो?
0: हाँ प्रमाणित बीज हाइब्रिड वाला,
1: हाइब्रिड वाला है
0: जी, एनआर के है। एक फल जो है बड़ा बेस्ट और हर गठान में फल दे रहे हैं भैया।
1: थोड़ा तीहा जतन के बारे में बताते हैं, मैं देखा था बहुत अच्छा कतार बद्ध जो है राहुल कर खेत है, बढ़िया दिखत है, फूले वाला है लगता है, और अच्छे से विस्तार से बताते हैं राहुल।
0: एक विधि और लाइन से है तो खूटा गाड़ी में कोई परेशान नहीं हो रही है। हाँ इतना झकरा लगाए से अब बहुत परेशानी हो जाती है। एक से 15-20 हजार में नहीं पड़ जाता हमन, मैंने 2 एकड़ में लगाया है हमन पूरा खीरा
1: में लगा 50 हजार।
0: 50 हजार लगाता थे हाँ।
1: और कई महीना में तैयार हो जाएगी
0: ये? 45 से 50 दिन में कम्प्लीट खत्म हो जाए बाड़ी भैया।
1: हालू हालू ये होत भी है एकदम। अम्बिका भैया ये बताई ये में विशेष रूप से जैसे जब पौधा रोपण राहुल करती तो का खाद देती, कैसे एक तीहा जतन लग करती तेला बता?
0: DAP और यूरिया और सुपर और कैल्शियम उल्शियम सब ढक देता भैया।
1: अच्छा।
0: हाँ पोटास वगैरह हाँ इधर ढक देता और बाद में पानी चला देता ना ड्रिप में। ड्रिप की सुविधा है हमारे।
1: अच्छा तो ये ड्रिप कर व्यवस्था भी राउर कर देखा थे रखे ही, तो ये बोरला राउर अपन खुद कमा के
0: खुद वायन भैया बोरला, और ड्रिप उद्यान विभाग से करवा रहे हैं कुछ सब्सिडी में।
1: शासन कति कर मतलब योजना कर भी लाभ राउर ले थे ना?
0: हाँ हाँ सब्सिडी तो मिली से हमें, हमारा ये करीबन 40-42 हजार के है तो हमारा देना पड़े 17-18 हजार ही।
1: बहुत अच्छा बात है भाई, शासन कर बहुत सारा अब तो योजना चलत है, योजना का लाभ अगर हमारे किसान भैया बहनी मन लेके फायदा ला कमाते तो अच्छा बात है। और देखत हन की शासन कति ले जो भी योजना कर लाभ ला भी ले थे और संगे संगे अपन आधुनिक विधि से खेती करके और अच्छा उत्पादन ला कर रहे थे। इमे का रोग राई लागे ला कैसे में, अगर रोग राई लग जाए खरपतवार
0: मौसम के हिसाब से बीमारी हुई, अभी तो कुछ दवाई नहीं छीटे हूँ, ऐसा मैं कोई खास मारे के और भी नहीं है। टमाटर के लगाए थे तो मर जाए, ऐसा कोई समस्या नहीं है, हमें हल्का कीड़ा मकोड़ा की दवाई छीट देना पड़े और ड्रिप में खाद भेजते भैया।
1: और इमे जैसे राउर कह ड्रिप में पानी कर, अभी देखिए अब तो बरखा कर मौसम,
0: हमें खाली खाद अभी डालना पड़े भैया।
1: कते कते दिन के अंतर में?
0: दो दिन के अंदर अंदर फल देना चालू कर, 2 दिन अंदर अंदर, अब अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़े भैया खाद, जो कर से पौधा ही स्पुष्ट रहे बड़ा तंदुरुस्त रहे।
1: इमें और खाद देख बाद फिर इमें जैसे घास मनाए जाए तो खरपतवार मन हो जाए तेला कैसे करती?
0: और नाली नाली का निंदवा देता हूँ और बाकी जो है और मल्चिंग है तो मैंने घास तो उगना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ नाली नाली कर उखड़वा देता हूँ, बाकी ते तो मल्चिंग के हिसाब से मैंने खीरा तरफ होना ही नहीं है। हाँ
1: ये मल्चिंग व्यवस्था जो है इला राउर कहाँ ले सीखे?
0: उद्यान विभाग से है। हाँ
1: तो ये जानकारी उद्यान विभाग वाला जो आते हैं हमारे कृषि सलाहकार मन,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो ही मन जानकारी देते हैं,
0: बीच बीच में संपर्क करते रहते हैं।
1: तो राउर तो प्रगतिशील किसान है और अपन किसानी का अनुभव बताइए, और कहीं कहीं राउर ये सब शासन कति ले कहीं घूमना फिरना हो से?
0: शासन करे तो घूमना फिरना नहीं हो से अभी अभी।
1: अच्छा खुद अपन मेहनत कर?
0: हाँ मेहनत कराते हैं।
1: और हमारे सुनने वाला किसान भैया बहनी मन ला बताते हैं कि भाई आज कर समय में देखिए आधुनिक विधि से अगर खेती करते हैं तो हमारा लाभ तो मिलता है, बाकी ये है कि अगर हम पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती में अगर अंतर देखी तो राउर आजकल समय में क्या दिखत?
0: आज समय में अगर खेती बाड़ी करा था भैया तो मोर अंदाज से लागे कि समस्या नहीं हुई भैया पैसा कौड़ी कर।
1: हाँ हाँ
0: हाँ और खाली सर्विस के चक्कर घूम है तो आदमी नौकरी के चक्कर घूम है तो फिर वो समय ऐसे भी दिया ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: हाँ मैं जब से खेती चालू करे भैया धान शुरू में कर बाद बैगन टमाटर खीरा में आ गए।
1: अच्छा एक पहले राउर का लगा रहे हैं खीरा से पहले?
0: एक पहले रही सो टमाटर रही, 2-2.5 एकड़ में रही।
1: टमाटर फसल में का विशेष?
0: बराबर हो गई भैया, थोड़ा सा नुकसान हुई गर्मी में रेट नहीं रहे के कारण। हाँ नहीं तो पिछले साल तो रही 2-2.5 लाख रुपये कर हिसाब रही। 2 एकड़ 2.5 एकड़ में खेती करता हूँ भैया खीरा और टमाटर वगैरह कर, तो मैं 2-2.5 लाख से नीचे कर काम नहीं हुए मोर।
1: ना अच्छा मेहनत कर रही राउर और लाभ ला कमा
0: तो मैं पलटी पलटी होते रहे तो करवा धान हो जाए भैया, धान में 2-4-5 लाख हो जाए भैया, ये हो जाए तो आदमी फुसत करना चाहिए।
1: अभी राउर का लगाई?
0: अभी खीरा लगा, खीरा के बाद फिर दूसरा लगे भैया।
1: अब अभी धान कर खेती भी तो राउर करे हो?
0: हाँ धान की खेती बढ़िया है भैया।
1: धान में रोपा ऊपर लगवा ढारे?
0: रोपा करीबन 5-7 एकड़ रोपा है, 5-7 एकड़ बुनाई है भैया।
1: अभी रोपा कर का स्थिति है? पूरा लगा ढारे?
0: पूरा भैया,

0: अच्छे तरीके पूरा लगा दिन। मैं तो गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर है, तुम्हारे समय से पहले हो जाए भैया।
1: अच्छा, सब व्यवस्था वहाँ है कहना चाहिए। आधुनिक तकनीक से राउर खेती कर रही थी, जो समय लग पकड़ के खेती करी वही लाभ भी मिले।
0: हाँ, अभी तक खेती कर भी तो बेसमझ में आयल भैया, समझ से बाहर लगे। हाँ, कर से पहले ही कर दे।
1: देखा तो राउर जो खीरा लगा है, कब तक हो जाइए तैयार?
0: ये 30 तारीख तक खत्म हो जाए भैया
1: फल लेके।
0: हाँ, फल लेके खत्म हो जाए 30 तारीख।
1: अगस्त में?
0: अगस्त में है, अधिक से अधिक हल्का हल्का 5 तारीख तक जाए, और बाद जाबे ना करिए।
1: देखिए, फूल लगना तो शुरू होगी
0: 15 अगस्त और 16 अगस्त में टोड़ाई चालू हो जाए।
1: टोड़ाई के बाद एक बाजार व्यवस्था बताइए अंबिका भैया कैसे करती?
0: ये सीधा सीधा गाड़ी लग गया भैया।
1: कहाँ से आते?
0: अंबिकापुर से, मंडी वाला मन।
1: मैंने मंडी वाला मन से सीधा संपर्क,
0: सीधा संपर्क है। और सीधा सीधा टोड़े के बाद टिंग प्लोथिंग में भर के सीधा सीधा पैक हो जाए, सीधा उठ के चले जाए अंबिकापुर।
1: बाजार कर भी कोई दिक्कत नहीं है? गाँव मैंने बाजार भी नहीं बैठना है, सीधा मतलब मंडी से आती
0: गाड़ी। मंडी से आते वही गाड़ी,
1: अब एक नोट जो है ले जाते। तो उसमें जैसे लाभ कर बात करी, ठीक ठाक रेट मिल जाए?
0: अगर 10 से ऊपर गई भैया, 10 से ऊपर गई तो बहुत अच्छा रेट है भैया। मान लाज अभी 2 एकड़ 17 डिसमिल में है, अगर 10 से ऊपर गई रेट तो 2.5 लाख से नीचे नहीं आए भैया।
1: चलो बहुत अच्छा, हम उम्मीद करत हन कि राउर कर खीरा बढ़िया हो और बढ़िया आर्थिक उन्नति करिए, आर्थिक लाभ ला कमाई। बाकी जाते जवाती मैं ये कहूँ कि हमार जो सुने वाला किसान भैया बहनी मना है, राउर कर गोट ला सुनते हैं, देखिए राउर खीरा भी लगाए ही, संगे संगे धान कर खेती भी बहुत अच्छा करे ही। तो हमार सुने वाला किसान भैया बहनी मन ला एक संदेश रूप में बताते हैं कि ओहू मन किस तरह से आज के समय में खेती करें और आगे बढ़े।
0: विधिवत वैज्ञानिक हिसाब से नहीं करें भैया तो नहीं सके भैया। बैल सिस्टम वाला जो थे 15 दिन जो थे एक खेत ला, तो उस हिसाब से आगे बढ़े का कोई चांस नहीं।
1: जमाना बदल गई से
0: आधुनिक
1: खेती की और आदमी दौड़ना पड़े,
0: दौड़ना पड़े। हाँ,
1: और समय ला पकड़ना।
0: हाँ,
1: पड़े।
0: और खीरा वगैरह कर ही ना भैया, तो खीरा में मारे का शिकायत नहीं है भैया। अगर रेट आ गई ना तो ऐसा नहीं है कि नहीं कमाई हो ही, 10 रुपया के ऊपर गई तो रेट पैसा कमा लें भैया।
1: हाँ, हाँ। चलो बहुत अच्छा बात है, हमारे सुने वाला किसान भैया बहनी हो, राउर मन भी दिखा, अंबिका भैया जी से खेती करी और अच्छा एक आर्थिक लाभ प्राप्त करी। अंबिका भैया राउर से खीरा लगाए और लाभ कमाए विषय में राउर से गुड बात हुई, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई, ये संदेश ला सुने ना, देखकर पहले किसान भाई से मुलाकात भी करें। सुखरकन खेती कराते हैं, जागरूक किसान हैं और बढ़िया कमाता है। देखिए लौवा लौकी हमारे यहाँ तो देखो अब साल भर मिलता है, कहे कि भाई ऐसा तरक्की हुए, वैज्ञानिक तरक्की हुए। लौकी कर खेती से हमला कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकेल, देखब कम लागत तो लगे और बहुत ज़्यादा इसमें फायदा होवे, एक लाभकारी व्यवसायिक फसल होने ला कथी। एकर फल जो है जल्दी तैयार हो जाए, बाजार में कहब कि साल भर एकर मांगो रहल और प्रति एकड़ 200 से 300 क्विंटल तक हमन पैदावार एकर प्राप्त कर सकत ही अगर बढ़िया सुगर अकन वैज्ञानिक ढंग कर खेती करी। लौकी कर जो खेती साल में अगर कहा मुख्य रूप से तो 2 बार करल जाए, जैसे गर्मी में जनवरी से फरवरी के बीच में और अभी वर्षा कर समय बरसात कर समय जून से जुलाई कहब कि ठीक अब एकर शुरुआत हो चुकी से रौरे मन लगा सकत ही। उन्नत किस्म कर कुछ बात करब तो सबसे पहले तो ये ध्यान करब कि राउर मन अपन क्षेत्र कर मौसम के अनुसार बढ़िया उपज कौन दे सकेल ऐसा किस्म कर चुनाव करना है, जैसे पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग ये जल्दी तैयार हो वाला फसल है, लंबा एकर आकार रहल वैसे कहब पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, राउंड कर मतलब होल गोला, ये गोल आकार कर लौकी हवे उसने पंजाब कोमल हवे 70 दिन में एकर जो है थोड़ा ये योग्य हो जाए और कहब कि जो बाहरी वायरस के प्रति सहनशील भी रहे, ओकर अलावा अरका बहार हवे हल्का कहब ना हल्का रंग रहे एकर हरा और एकर जो है

लंबा किस्म कर है, तो कोई भी किस्म कर बढ़िया चुनाव करी और लगाई। बीज कर बात करब, बीज दर जो है 1.5 से 2.5 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में लागल, मतलब 2.5 एकड़ कर बात हवे। और बीजोपचार तो रोरे मनजानती करना जरूरी रहल, ताकि जो है बीजा में जो भी बीज जनित रोग रही ना वह नष्ट हो जाए। तो वो इससे पहले 2.5 ग्राम दवाई है थायरम या बाविस्टिन दवाई ला प्रति किलो बीज कर दर से उपचारित करना चाहिए, ताकि शुरुआती रोग से हमला बचाव हो सके। खेत कर तैयारी कहब, बढ़िया जो है जल निकास मतलब पानी जो है झीन मढ़े निकास वाला दोमट मिट्टी जेकर पीएच मान 6.5 से 7.5 कर बीच हो बढ़िया मानल गई से। अब पीएच मान कर बात हो इस तो कई बहुत जन तो जान ही नहीं कि पीएच मान का होल, ओमन नहीं जानी जो अपन खेत कर जो है माटी कर परीक्षण नहीं कराई है। माटी कर परीक्षण रौरे मन जरूर से जरूर करवाई, जो लोग नहीं करवाई है ओमन क्या ही कोकर से फायदे फायदा हुए। परीक्षण कराए के बाद जब खेती करब तो कभी घट्टा नहीं खाब। फिर खाद कर बात हवे, खेत कर तैयारी के समय 20 से 25 टन जो है सड़ा हुआ गोबर कर खाद प्रति एकड़ हमला मिलाना हवे। एक साथ ही बुआई कर समय जैसे 30 किलो यूरिया, 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो पोटास प्रति एकड़ कर हिसाब से हमला देना हवे। और जो बुआई कर जो विधि है वैज्ञानिक ढंग से करना है। बीच जो है कहब 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी में मचान विधि से लगाना सबसे ज़्यादा लाभदायक रहल। नाली या गड्ढा कर बीच की दूरी कहब लगभग 2.5 और 2 मीटर के में रखना है, मतलब 2.5 × 2 लगत हैं। एक गड्ढा में 2 से 3 बीज लगाना हवे बोना है और अंकुरण के 15 दिन बाद जो है स्वस्थ पौधा रख के बाकी ला हटा देना है। सिंचाई कर बात करी तो गर्मी कर मौसम में तो कहब कि 4-5 दिन के आतर में हमला करना पड़ जाए, बाकी बरखा कर समय में जब देखें कि भाई सूखत है वो समय हमला आवश्यकता अनुसार करना है। समय समय पर खेत कर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, खरपतवार निकालते रहना चाहिए और बुआई के करीब करीब 55 से 70 दिन बाद लौकी तोड़ाई के लिए जो है तैयार हो जाए। तो फल ज़्यादा पके नहीं देना चाहिए, बल्कि कोमर और मुलायम अवस्था में ही बढ़िया धारदार चाकू से काटना चाहिए। देखब कि ये तो इस लौकी कर बात बात करूँ। अब मंडी भाव कर, अंबिकापुर कर मंडी में गेहूँ रहीस 2,545 रुपये प्रति क्विंटल, महुआ रहीस 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, रागी रहीस 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मंगाल चना रहीस 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रहीस 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करी तो तापमान कर बात, आज कर अधिकतम तापमान रहीस 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहीस 25 डिग्री सेल्सियस। कायल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 25 डिग्री सेल्सियस। जब सवाल जवाब कर दे रहा हवे तो देखी पाछू बीती से बुध रोज हमन पूछे रहे कि हरा चारा उत्पादन विधि में बिना माटी कर चारा कैसे उगाल जाए, वोला हाइड्रोपोनिक्स विधि कथें। तो जमीन कर कमी यदि पानी कर संकट हो तो ट्रे में अंकुरित करके हरा चारा तैयार करल जाए, जिनमें जौ मक्का या जई तैयार करल जाए, 7 से 8 दिन लागेल। सही जवाब भेजिन है हमार किसान भाई ग्राम कोटिया से ओम प्रकाश, प्रीतम, जगेसर, सुखमनिया, मंगली, अंकुश, चौबेदास और उनकर संतारे। चिट्ठी लिखे बर उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और हमार आज कर सवाल हवे कि खरीफ में लौकी कर बुआई कर सही समय का हवे, इला राउर मल्ला लिख के भेजना, जिनकर सही जवाब रही उनकर जो है नावला में कार्यक्रम में शामिल कर हूँ। जाति जवाति एक ठन सुघर अकन गीत हो जाए। अभी भाई देखिए आइस तो नहीं है अगन अगहन, तो यही बार कहते हैं कि गोरिया हो झुलनिया बनवाब अगहन में। शंकर यादव उनकर संगता हरे।

वाह भाई, गाना तो ऐसा रहल कि सुनते चलो लागल बाकी का है कि रौरे मन से विदा लेकर बेरा हो चली से आने दिन कोनो दिन फेर पूरा गीत ला सुनबो। मजेदार गीत है शंकर यादव और हुनकर संगता कर गाल। तो भाई देखिए अब विदा लेकर बेरा हो चली से एक बात जरूर कहूँ कि लड़का छुआ मन कर स्कूल भी खुल गई से एक कति खेती पाती काम बूता भी हवे तो ध्यान करब काम बूता भी होत रहे। लड़का छुआ मल्ला स्कूल भी भेजना हवे बहुत जरूरी है भाई पढ़ना लिखना। वो शिक्षित हुई तो आगे जाके जो है हमारा देश का जो भावी जो है ना पीढ़ी वही मन हमें देश कर भार वो मन कर ऊपर है। अपन गांव घर कर नाव ऊँचा कर ही पढ़ी लिखी और देश कर भी नाव। तो विदा लेहल जाए रौरे मन से धर्मो भैया कर राम राम।

अभी किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी रेडियो दोस्तों को एक बेहद हसीन और शांत खूबसूरत रात में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत की सुहानी सरगम, धड़कती हुई सुंदर धुनें और आप सभी श्रोताओं के दिल से भेजे गए प्यार भरे संदेशों को लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुका है आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण।

उम्मीद है कि दिन भर की तमाम व्यस्तता और भागदौड़ के बाद आप सब जहां कहीं भी हों अपने घरों में स्वस्थ हों, सब परिवार प्रसन्न हों और इस शांत रात के सुकून को महसूस कर रहे हों। दोस्तों, रात का ये जो समय होता है ना, वो बड़ा जादुई और सुकूनदेह होता है। दिन भर का कोलाहल थम जाता है, आसमान में तारों की महफिल सज जाती है और हमारे अंबिकापुर की वादियों में चलती हुई ये मखमली हवा, ठंडी ठंडी हवा मन को एक असीम शांति दे जाती है। तो देर किस बात की, आपके भेजे गए ढेर सारे आत्मीय संदेशों, इंस्टाग्राम की फरमाइशों और अपनी पसंद के शानदार सदाबहार गानों के साथ अब शुरू हो रहा है आपका अपना प्रिय कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। अगले कुछ पलों तक हम और आप साथ मिलकर तय करेंगे मस्ती और सुरों का एक ऐसा सुरीला सफर जहां हर गीत में होगी आप सबकी पसंद और हर संदेश में घुली होगी अपनों की मिठास। तो दिन भर की सारी थकान को भूल जाइए, आराम से रिलैक्स हो जाइए और दिल से इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, क्योंकि शुरू हो चुका है इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। पहले गीत के रूप में हमारे पास ये सभी श्रोता साथी शामिल हैं। बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, ग्राम पंचायत खोदला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवनधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा सोमार साय, सुखराम हीरामणि, ऐश्वर्या, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, विनीता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार, देवीगंज रोड अंबिकापुर से हैं राजकुमार निपवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य इस गीत में शामिल हैं। सावरगांव महाराष्ट्र से हैं रघुनाथ पाटिल नारे और पुष्पाताई नारे, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा, विराटनगर नेपाल से हैं अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका और परिवार के सभी सदस्य। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म सोल्जर का ये गीत, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। जब जब आपकी पसंद के गीत बजते हैं आपके होठों पर एक मधुर मुस्कान आ ही जाती है और रात की सुहानी पलों में जब ये गीत आप सुन रहे होंगे तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जी दोस्तों, इंस्टा फरमाइश की महफिल में आप सब से नज़र तो नहीं मिलती, लेकिन आप सबका नाम जपते जपते हमें बहुत अच्छा लगता है। जहाँ हर संदेश में अपनापन होता है, हर गीत में खूबसूरत एहसास होता है, और इनसे आपकी फरमाइश और आपके संगीत का एक अनोखा सा संगम होता है, और इस संगम में हमारे बहुत सारे साथी शामिल होते हैं। और इस संगम में हमारे अगले गीत में ये साथी शामिल हैं, बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, सूर्यनगरी जोधपुर।

राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमांश, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल, यवतमाल विदर्भ से संतोष खटसे और विनोद खटसे। अगले गीत के रूप में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। धुर्रा बांदा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू। सोकनाहा नेपाल से हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल, वंदना, प्रियंका और इनके बहुत सारे साथी। छत्तीसगढ़ से हैं नरेश कुमार, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार, चित्रंजन, सुनील कुमार, तेज कुमार, रविशंकर, मनीष कुमार, गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, श्वेता, कुलदीप और सुचि कश्यप। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं बनवारी लाल, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके बहुत सारे साथी इस गीत में शामिल हैं। दतरंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं दिल फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। और जब जब कार्यक्रम में आप सब अपना नाम सुनते हैं ना, तो आप सबकी नींद भी खो जाती है कुछ इस गीत की तरह।

अभी आप सुन रहे थे दिल फिल्म का ये गीत। यादों को सुरों में पिरोता आपका अपना कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी पसंद का गीत अब आने वाला है और इस गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। सोलापुर महाराष्ट्र से हैं विष्णु मिस्किन, रितिका वाणी, आरव चंद्र, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी। नवापारा लखनपुर सरगुजा से हैं मुनेश राम, सालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी सदस्य। अड़ार नानघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। संभाजीनगर महाराष्ट्र से हैं अनिल कुमार घोटके, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके। नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, मिस्त्री फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल, घनश्याम, भार्गव, हसन और बहुत सारे साथी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। सत्यम क्लब फुलगोना प्रेमनगर से हैं अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, मिथिलेश और मनोज यादव। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, राहुल, गुरकीतर, गुरबख्श सिंह और इनके बहुत सारे साथी। भागलपुर अस्तु बिहार से हैं प्रदीप कुमार मंडल, आशीष, कुंदल, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी। डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया।

जिला जालाना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर, निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, दशरथ और अनुष्का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

फिल्म का नाम है टक्कर, आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से।

जी हाँ दोस्तों, आप आंखों में तो नहीं, हमारे दिल में बसे हैं। गीतों की खुशबू और संदेशों की मिठास, यही है इंस्टा फरमाइश की खास बात। और ख़ास बात तब होती है जब इस कार्यक्रम में आप सबके नाम शामिल होते हैं। तो अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। जिला जालाना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर, निजामुद्दीन, राम भाव तांदले, धोतर, जोड़ा, आष्टी, दशरथ, अनुष्का। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार। आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल हैं। राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लाडो, लवली, लव, रजत, कुश और समस्त खन्ना परिवार। पद्मा टाकीज नेवानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन झा, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगल, मंगला और राजेंद्र जीशा। सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान और मास्टर जीवयम। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा अभय। जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। आइए आप सभी की पसंद पर आप सबको सुनवाते हैं प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का ये गीत, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

दोस्तों, आपका प्यार, आपकी पसंद और हमारे साथ गीतों का खूबसूरत सफर, इसी को कहते हैं इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोताओं, हमने भी प्यार किया है आपके संदेशों से। जहाँ कुछ बातें दिल की होती हैं, कुछ गीत आपकी पसंद के गीत होते हैं, और जब नाम आपके आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं, पटेल नगर मलोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। कोल सिटी बरका काना से है अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोटखे, श्रीमती नंदा, हनुमान उत्तम,

संबलपुर कांकेर सिंह, फग्गूराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, भावपुर मरियाहू जौनपुर सिंह, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नावेद आजरा, तबस्सुम रायपुर अनई जिला बनारस से हैं, मास्टर अब्दुल मजीद, नोरीन आफिया परवीन, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुंभार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दल्ले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सानिका, अजय करिश्मा अविका और विशाखा, महोबा बुंदेलखंड यूपी से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रिया रेनू दिवांशी, आराधना और रोनिका यादव, बागपत से हैं जगमोहन सिंह, मुनीश अर्जुन भारती, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं वीर जारा फिल्म का ये गीत, आवाज़ उदित नारायण की है।

जी हाँ दोस्तों, हम भी यहाँ हैं आप सबका नाम लेने के लिए। इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल थे, करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता, सिद्धांत, अर्जुन, नागपुर से वैशाली, शैलेश, एकांश, कुमारी, ध्वनि गवाणकर, कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक, HD गुप्ता, रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रियांश गुप्ता, शशांक, दुर्ग से अनंत जैन, हसित, प्रीति जैन, अहमदपुर खंडवा से कैलाश फूलमाली और कालानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। आज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका रेडियो दोस्त तरुण। मिडवेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार संध्या, फिर इवनिंग न्यूज का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना,

0: नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई।

0: में आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूँ। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे

0: मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का ये पहला गीत

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर।

जयपुर से संपर्क करें 0777423060। नंबर एक बार फिर 0777423060।

अभी आप सुन रहे थे घूंघट फिल्म का ये गीत हरिहरन की आवाज में। गीत और संगीत आनंदराज आनंद का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित किए जाएंगे।

मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान

0: को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
0: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियाँ रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग-अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन-कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग-अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का यह बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी,
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आएं, दूर दराज गांवों से आएं और ऐसे वर्गों से आएं जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि

0: बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है, या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
0: जी
1: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
0: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
0: बिल्कुल
1: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
0: जी
1: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कि आपको कोई भी बच्चा

0: ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए, ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे ज़रूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी, अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं
1: जी
2: पैरा एथलीट हूँ, वो शॉट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12 तक। फिर
1: जी जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी ऐसा मैं सोची थी, पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए

0: सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
1: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
1: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, so that's why I work on these stuff and yeah, I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
1: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
1: It was something that I never dreamt of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मिलने बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरनमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, वाले ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि उसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का

0: एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने, हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे ये मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सकेगी, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहाँ से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
0: जी, और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा,

0: के जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
1: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: चर्चा का विषय है।

अभी हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए ईमेल की गूंज कार्यक्रम।

नमस्कार, शुभ रात्रि श्रोताओं। ईमेल की गूंज में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। रात की इन खुशनुमा पलों में मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। आसमान पर बादलों का पहरा है, चांद भी आज बादलों की ओट में लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं रात की खामोशी में एक अलग ही संगीत घोल रहा है। सचमुच ऐसा मनमोहक नज़ारा रात की बाहों में ही देखने को मिलता है, जब प्रकृति भी धीमी धीमी गुनगुनाती हुई प्रतीत होती है। और ऐसे ही सुहाने मौसम में हम लेकर आए हैं आपके नाम, आपकी पसंद और आपके अपनेपन से सजा हुआ कार्यक्रम ईमेल की गूंज, जहां हर ईमेल में बसा होता है आपका प्यार, हर नाम में झलकती है आपकी पहचान और हर गीत लेकर आता है दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास। तो कार्यक्रम में पहले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। ग्राम सोगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं संतोष एस काले, तेजस, लोकेश और इनके साथी, सूर्यनगरी जोधपुर से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेवी गर्वी और हिमांश, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन और टुक टुक। इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल हैं। ये ईमेल आया है हमारे पास नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। इसमें हमारे श्रोता साथी हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सांगली से हैं

0: हनमत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, जालंधर सिटी पंजाब से हैं सोनू, रवि, राज, गुलसन और लक्की। आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, शुभम बेडे। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे, दीपक और नवीन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान, अब्बासी। आप सब ने सुनना चाहा है ये गीत।
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

सच में दोस्तों, ये रातें हैं, ये मौसम है और आप सब हैं, और आप सब हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता शामिल हैं। सचमुच जब भी आप शामिल होते हैं ना, तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल्ली का ठग से ये गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी, गीत शैलेंद्र ने लिखा था, संगीत था रवि का। कार्यक्रम में अगला गीत में हमारे

ये श्रोता साथी शामिल हैं। गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज। जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श, सार्थक, आलोकिक। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। जिला किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन। छत्तीसगढ़ पथरिया से हैं चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। जाखोद राजस्थान से हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमार और पूजा खटक। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल। आइए आप सबकी पसंद पर आप सबको सुनवाते हैं दाग फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। दूरी चाहे मेलों की हो, पर जब आपका एक ईमेल हमारे इनबॉक्स में आता है तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे ठीक सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हों। और सचमुच जब भी मैं यहाँ से मुस्कुराता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इंदिरा नगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतन माला, ओम कुमार, आरती सुरलकर। मामुल वाडी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, वसंत राव भोजनी, पी एस नौकर, तुषार करांगले। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरव साइना और मैंडी शर्मा। सारसताल सोनगढ़ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा। मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से हैं अभिजीत कवाणकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, अर्जुन और टुक टुक। आइए आप सब की पसंद पर सुनवाते हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं बप्पी लाहिरी और आशा भोसले की।

हम भी श्रोताओं यही कहते हैं कि प्यार कभी कम मत कीजिएगा। वैसे भी हम तो आपका प्यार कभी कम होने ही नहीं देते, क्योंकि जब जब आपके ईमेल हम तक पहुंचते हैं, मन सचमुच खुशी से भर जाता है। आपके नाम, आपकी पसंद और आपके शब्दों में छुपा अपनापन हमें ये एहसास दिलाता है कि आप भले ही दूर हों, लेकिन दिल से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और वैसे ही हमारे अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी साथ हैं। हयात कॉलोनी अजरिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफसल, नफीसा प्रवीण, नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज और गुरनूर सिंह, और इनके साथ हैं शुभदीप सिंह। ग्राम लसूडिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, कोमल, परी, कृतिका, रमेश, चंद्र डांगी, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार, रघुवीर नगर से हैं श्रुति और किरण, और ये ईमेल आया है हमारे पास नई दिल्ली से। शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनियाना, सुकन्या और सविता, तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नसीर शेख, नाजिया नासिर, गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबीहा, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, बाजार पारा जिला बलरामपुर से धनेश्वर निषाद, दीपिका, शिवांश, राम भरोस और नरेश सिंह, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश और चंद्र वर्मा, और इनके साथ हैं शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं घर फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की है।

सच में दोस्तों फिर वही रात है, लेकिन इस रात में भी बहुत खूबसूरती है क्योंकि इस कार्यक्रम में आप सब के नाम शामिल हुए थे। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका रेडियो दोस्त तरुण।

इसी के साथ ईमेल की गूंज कार्यक्रम बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर रात है और सुंदरता इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में आप सब शामिल होने वाले हैं। तो पहले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हुए हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक, जेतेक बीरक, मीका बीरक, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश दिवांगन, मधु दिवांगन, हिमांशु और अंकित दिवांगन, बठेना से बलकर्ण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, सारा गांव से हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल हैं, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमा नाज

अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। सारिमपुर बक्सर से हैं राजेश टी डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है काला बाजार, संगीत है एसडी बर्मन का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सच में दोस्तों, चांद तो खोया खोया है क्योंकि बादल जो आ गए हैं, और इस बारिश के मौसम में जब ऐसे गीत बजते हैं तो सचमुच आनंद बढ़ जाता है। अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका पुरुणार्मिका उत्कर्ष नेताम। इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी भी शामिल हैं, महेंद्र विजया और मिलिंद। ये पत्र आया है हमारे पास वारुट से, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। आमा खोड़रा छत्तीसगढ़ से हैं, राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी सदीपा नेताम, चंद्रदीप और दक्ष प्रिया। इसी गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने भी की है, चांदुर बिस्वासी नारायण भाव, विठल राव, ललिता परी, संजना, गणेश, कार्तिक, उषा, सोरना, स्वाति और मालती चौधरी। इसी गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने भी की है, धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नीत राम साहू और भूपेंद्र साहू। आइए आप सब की पसंद पर सुनवाते हैं लव मैरिज फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत हसरत जयपुरी ने लिखा है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

जी हाँ दोस्तों, हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन समय की घड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। और जैसे ही घड़ियाँ आगे बढ़ती हैं ना, आप सबके जब पत्र आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। कार्यक्रम में अगले गीत में हमारे साथ ही शामिल हैं रतरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा गुलाब दास, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका, गणेश दादा, कार्तिक, परी, मालती, स्वाति और ललिता नारायण खर्चे, तेलंगाना भवनगीर विद्यानगर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन अब्दुल बाबा अंजाना, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता, बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित, कुमारी ध्वनि गवाणकर और इनके साथ हैं टुक टुक, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हदिया, आसमा सालिया, शोएब खान, मुश्ताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, ललित नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, मालती स्वाति और प्रयाग चौधरी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं छलिया फिल्म का ये गीत। आवाज मुकेश की है, गीत कमर जलालाबादी ने लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

सदियों ऐसे गीतों का साथ हो और आपका साथ हो तो समा हसीन सा हो जाता है, जैसे किसी अपने का साथ हो जिसे हम अपने से ज्यादा अजीज समझते हैं। और आप सब तो हमारे सबसे अजीज हैं। अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीवा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी, माफ कीजिएगा, इसी गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा और इनके बहुत सारे साथी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, रंजना सिंह। बिलासपुर बस्ती से हैं शिव नारायण, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। अंबिकापुर से हैं अब्दुल वहीद खान, सलमा बेगम। प्रेमनगर रघुनाथपुर से हैं जितेंद्र सिंह, संगीता सिंह और इनके बहुत सारे साथी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है झील की उस पार, संगीत आर डी बर्मन का और गीत आनंद बख्शी ने लिखा है।

सचमुच ये नज़ारे बहुत हसीन हो जाते हैं जब जब आपके कार्यक्रम में पत्र आते हैं, और आप भी बहुत खुश हो जाते हैं जब आपका नाम इस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे झील की उस पार फिल्म का गीत, आवाज़ किशोर कुमार की थी, संगीत आर डी वर्मन का और गीत आनंद बख्शी ने लिखा था। इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका रेडियो दोस्त तरुण।

0: मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी समाचार, फिर अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई।

बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मिड वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी तीसरी और अंतिम सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:51 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।